नमस्कार अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 26 मई 2026 मंगलवार, ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष एकादशी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:17 पर।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत करेंगे RJ सेजल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है घर परिवार अंक 4, आरजे सेजल के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है परवरिश और टेक्नोलॉजी। पहले समय में परवरिश और आज के समय के पालन पोषण में काफी अंतर आ चुका है। कहीं ना कहीं इस बदलाव में बदलती या कह लीजिए बढ़ती टेक्नोलॉजी का भी योगदान है, जो अब बड़ों के हाथ से निकलकर बच्चों के हाथ में आ गई है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति बालाजी, जो एक अध्यापिका हैं और पिछले 23 सालों से अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही एक सिंगल मदर भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सेजल, आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले श्रोताओं का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसे हम परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मुताबिक पहले समय की जो परवरिश होती थी और आज के समय में जिस तरीके से बच्चों की परवरिश हो रही है, उसमें आपको क्या अंतर लगता है?
1: पहले समय में ये होता था कि मदर्स जो थी ज्यादातर होम मेकर्स होती थी और घर पर ही रहती थी, लेकिन आजकल के बदलते हुए दौर में ये देखा गया है कि मदर्स जो है वो ऑफिस जाती हैं, बाहर काम करने जाती हैं, तो उसमें बच्चों को पालन पोषण में काफ़ी परेशानी होती है। पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे हम अभी हमने ये सुना है कि बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, उनको मित्र के जैसे रखना चाहिए, लेकिन पहले टाइम में ये सब नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर जो थी हमारे साथ एक मदर की तरह ही बिहेव करती थी, कभी एक मित्र की तरह हमसे बात नहीं करते थे और हमें डर होता था उनका। कोई भी बात है, कोई गलत बात करने से पहले हमें ये होता था कहीं मम्मी देख ना ले, कहीं पापा देख ना ले, या कह लो कि एक डिस्टेंस होता था, हमें डर होता था। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करती हैं, ये अच्छी भी बात है, ये कि एक गलत बात नहीं है, लेकिन वो इतना फ्रेंडली हो जाती हैं कि बच्चों में जो एक मदर और एक बच्चे का डिस्टेंस होना चाहिए वो भूल जाता है। आप ये सोच लो कि कोई भी बात अगर उन्हें कोई खटकती है तो अब वो एकदम से नेट पे सर्च करती हैं, अगर बच्चा ये कर रहा है तो मैं क्या करना चाहिए, ये कर रहा है,

0: पूछना चाहूंगी कि आप टीचर भी हैं और एक मदर भी हैं, ज्यादा मुश्किल स्कूल में बच्चों को संभालना होता है या घर में बच्चों को संभालना होता है?
1: देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर पे हो चाहे बाहर हो, बच्चों को तो संभालना मुश्किल होता ही है। लेकिन ये होता है कि आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं मदर्स से भी बात करती हूँ तो मदर्स मतलब यही बोलती हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, 24 घंटे फोन पे लगा रहता है। लेकिन मैंने ये हमेशा उनको बोलती हूँ कि अभी बच्चा छोटा है, जो छोटा बच्चा होता है ना वो इमोशनली अटैचमेंट होती है उसके साथ। हम क्लास में भी ये ऐसे करते हैं कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर तू ये पढ़ेगा तो मैं तेरे को मतलब क्लैपिंग करवाऊंगी क्लास में, ऐसे मोटिवेशन करते रहते हैं बच्चों की। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं ना वो खुद ही फोन पे बिजी रहती हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा मतलब ये रूटीन है, मैं जब भी क्लास में एंटर करती हूँ ना सबसे पहले 5-10 मिनट बच्चों को मोटिवेशनल थोड़ी स्पीच देती हूँ, उनको एथिक्स समझाती हूँ, बेसिक नॉलेज देती हूँ बच्चों को कि अपनी जो मदर है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या कुछ ऐसी गाइडेंस सुबह ही देती हूँ ताकि सारा दिन बच्चों का माइंड जो है ना वो सेट रहता है।
0: जी, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चे जो होते हैं कम उम्र में ही उनको इस कॉन्फिडेंस की, इस मोटिवेशन की बहुत ही कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले टाइम में कंपैरिजन होता था बच्चों को लेके कि रिलेटिव्स के साथ बच्चे कंपेयर करते थे पेरेंट्स कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, हमारा बच्चा नहीं अच्छा। लेकिन आज के समय में आप कह लीजिए कि तुलना अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से हटकर अब दुनिया तक पहुंच चुकी है क्योंकि हमारे हाथ में फोन है, हम रील्स देखते हैं, इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, तो देश दुनिया के कई सारे बच्चों का हमें टैलेंट दिखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बच्चों में कमी ढूंढने लग जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि किस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हैं?
1: हम ये अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट पे बच्चों की काबिलियत देख के, दूसरे बच्चों की काबिलियत देख के, उनकी पोस्ट देख के चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सेम वैसे ही ढंग से करे। लेकिन मेरे नज़र में ये चीज़ गलत है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं और उसी ढंग को अपनाते हुए हमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आज के समय में जैसे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट काफी आगे बढ़ चुका है और ऐसी रील्स जो है स्क्रॉल करते करते हमारे सामने आ ही जाती हैं और उन्हें नज़रअंदाज करना भी मुश्किल है क्योंकि ऐसी रील्स हर पेरेंट्स की सोशल मीडिया फीड पर ना जाने ही कितनी ही होंगी। तो अब ऐसे में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, यहाँ पे तो ये है कि जो रील्स में हमें दिखाया जाता है हम उसी पहलू को देखते हैं। क्या आपने उनके घर की व्यवस्था देखी है कि वो घर में बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या बिहेव करते हैं? हमें सिर्फ मीडिया में काफ़ी टाइम की मुशक्कत के बाद एक 5-10 मिनट की या कह लो कुछ सेकंड्स की वीडियो दिखाई जाती है और उनका एक ब्राइट पार्ट ही बच्चे का दिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखते हुए हमें अपने बच्चों को उन पे नहीं थोपना चाहिए। आप बच्चे की खुद की काबिलियत देखिए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना चाहिए।
0: जी हाँ, बच्चों की उम्र भी बहुत कम होती है इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्योंकि उनके लिए सब एनवायरनमेंट भी नया है, ये सब चीज़ें भी नई हैं, फ़ोन भी उनके लिए नया है। जो पेरेंट्स हैं वही एक तरीके से बच्चों को हर एक चीज़ से, हर एक पहलू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका पेरेंट्स की ही रहती है इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन बच्चों का मोरल भी डाउन करता है। इसी जगह अगर हम उनके साथ खेलें, उनसे बात करें और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही आप बच्चों को काफी समय से पढ़ाती आ रही हैं, तो आपके मुताबिक उन्हें किन एक्टिविटीज के द्वारा अपने साथ जोड़ा जा सकता है?
1: एक्टिविटीज तो बहुत हैं, जैसे मेरे खुद के 2 बच्चे हैं
0: जी,
1: तो जब वो छोटे थे ना, मुझे याद है मेरा बड़ा बेटा UKG में था, तब से मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया
0: जी।
1: मैं खुद जॉब करती थी, मैं स्कूल चली जाती थी तो मैं बच्चे को बोलती थी कि बेटा घर को लॉक ऐसे लगाना है, अच्छे से चेक करना है, ताला खींच के देखना है ताला लग गया है कि नहीं, उनको पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा अरेंज करके सुबह नाश्ते में दे दिया खाने को, वो स्कूल

0: से जल्दी आ जाते थे, मैं लेट आती थी घर, तो मैं खाने के लिए कुछ रख जाती थी कि ये आपने स्कूल से आके ये करना है, यूनिफॉर्म उतारनी है, और उनको काम दे जाती थी करने के लिए कि आपने ये लर्न करके रखना है, मैंने आते ही सुनना है। और मैंने शुरू से ही उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया, जैसे उनकी वार्डरोब जो थी वो अलग कर दी कि बेटा अपने जो क्लोथ्स हैं वो खुद ही रैप करके अलमीरा में रखने हैं, और संडे के संडे मैं खुद बच्चों को बोलती थी अपनी अलमीरा के कपड़े निकालिए, उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। और जब मैंने किचन में काम करती थी, कभी उसको प्याज दे देना छीलने के लिए कि बेटा ये प्याज छीलो, मेरी हेल्प करो, तो बच्चे बड़े खुश होते थे इन चीज़ों के लिए। तो लेकिन मेरे को लगता है कि आजकल की माएँ ये हेल्प नहीं लेती हैं, बच्चों को खुद जो है मोबाइल पकड़ा दे देती कि हैं कि वो मोबाइल लेके अपना बिजी रहेंगे और हम अपना काम कर लेंगे।
1: जी, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा पैम्पर भी किया जाता है, ताकि पेरेंट जो है अगर वर्किंग वुमेन भी हैं वो अपना काम ठीक से कर सकें और बच्चे शरारतें ना करें। तो कहीं ना कहीं फ़ोन का आजकल सहारा लिया जा रहा है। और एज एन टीचर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्लासरूम में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है, तो आप किन तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को करने के लिए कहती हैं ताकि वो क्लास में एक तो बिजी रहे और मेंटली भी क्रिएटिव रहे?
0: रीडिंग वगैरह बच्चे करते रहते हैं, कभी लर्निंग होगी, टेस्ट हो गया, ऐसे
1: जी
0: काम
1: जी
0: करते रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे ये सब करने के बाद जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनको जैसे वर्ड चेन कुछ ऐसी गेम्स खिलाती हूँ कि चलो बेटा, जैसे मैं क्लास में जितने भी बच्चे हैं अ लेटर से जितने हैं वो खड़े हो जाओ और मुझे फाइव फाइव कोई वर्ड्स न्यू बना के अ लेटर से ही सुनाओ। तो ऐसी मैं गेम्स खिलाती रहती हूँ। फिर बच्चों को, मतलब बच्चे घर पे भी बिजी रहें, उसके लिए जैसे मान लो उनकी पेंसिल बॉक्स है, कई बच्चों की बहुत सी अनटाइडी हो जाती है, पेंसिल शॉप करते हैं तो
1: जी
0: वो ब्लैक सी हो जाती है, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा देखो आप घर में नहाते हो ना, तो आपने क्या करना है घर जाके अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है।
1: जी
0: तो उसमें जैसे सॉक्स में साबुन डाल लिया, उनको पूरा ढंग बताती हूँ कि फिर मैं उनको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ये देखो पेंसिल बॉक्स से आपकी अनटाइडी हो गई है, इसको वॉश करो। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं घर पे बिहेव करती हूँ एज अ मदर, उस तरह से मैं स्कूल में आपकी मम्मा हूँ, तो आप जैसे मैं बोलूँगी वैसे मैंने कल देखनी है सबकी पेंसिल बॉक्स साफ होनी चाहिए। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, सुबह जब नेक्स्ट डे आते हैं तो मुझे दिखाते हैं, देखो मैम ये मेरी पेंसिल बॉक्स देखो कितनी सुंदर सी लग रही है, मैं भी नहाया था और मेरी पेंसिल बॉक्स भी नहाई थी। और इसी तरह से वाटर बॉटल भी, और पेरेंट्स भी खुश होते हैं जब वो पीटीएम पे आते हैं ना तो मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैम देखो आपने ऐसा बोला था बच्चों को करने के लिए, वो घर आके हमें बोलते हैं कि मैंने अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है, अपनी बॉटल को भी साफ करना है। क्लास में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, जैसे डिस्प्ले बोर्ड को हम डेकोरेट करते हैं तो बच्चों की मैं हेल्प लेती हूँ कि बेटा देखो ये जो चार्ट मैं लगा रही हूँ ये ठीक है, ये ऊपर तो नहीं है नीचे तो नहीं है ऐसे, तो स्टेपल पिन के साथ उनको मतलब सिखाती हूँ कि ये देखो ऐसे स्टेपल करते हैं, इस तरह से आप घर में भी मम्मा की हेल्प किया करो, अरेंज किया करो, चीज़ें ब्यूटीफुल रखा करो, जिस तरह आप अपने घर को ब्यूटीफुल रखते अपनी क्लास को भी ब्यूटीफुल रखें। इस तरह से काफ़ी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं क्लास में और बच्चे बहुत खुश होते हैं।
1: जी, कहीं ना कहीं माँ के बाद स्कूल में ही टीचर जो है, दूसरे गुरु जो होते हैं हमारे, वो ही रोल प्ले करते हैं बच्चों को अच्छे से परवरिश देने में, उनके हर एक चीज़ मॉरल एथिक्स सिखाने में।
0: हाँ जी,
1: तो टीचर्स का भी एक अच्छा रोल रहता है। साथ ही अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट होने की, कि बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और आज का टाइम भी ऐसा ही है कि बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंसी के बारे में सिखाना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सी एज ठीक रहती है कि बच्चों को हम अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू करें, उन्हें नई नई चीजें सिखाना शुरू करें कि वो मेंटली इतने एक्टिव रहते हैं कि ये काम कर सके वो?
0: देखिए ऐसे तो बच्चों की कोई एज नहीं होती
1: जी।
0: आजकल के बच्चे तो कह लो कि जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं
1: जी।
0: हमारे टाइम पे ये था कि हमें कोई चीज समझने में काफी टाइम लग जाता था कि जैसे आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ जब उनका चलना शुरू हो जाता है तो मोबाइल पे ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे सारा सिस्टम पता है। हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन ये है कि अगर हम इसी चीज का फायदा उठाते हुए बच्चे को शुरू से ही इंडिपेंडेंट कर ली, क्योंकि आजकल मदर्स जो हैं मोस्टली जॉब करती हैं, तो फोन में ना लगाते हुए मदर्स जो हैं बच्चों को उसी लाइन में मोटिवेट करें, जैसे घर में अपने काम में हेल्प लें बच्चों से, या कुछ अच्छा सिखाएं, अच्छा दिखाएं। जैसे कि मान लो कि मैं ये चाहती हूँ कि अपने कल्चर के साथ, अपने रिलीजन के साथ भी टच होना चाहिए बच्चों को शुरू से ही, जैसे हम सुबह उठें, सबको नमस्ते या जो भी आप बोलते हो वो बोलें, उनसे उनको बताएं कि भगवान जी के बारे में ऐसी चीज़ें बताएं, मतलब उनको ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए शुरू से ही बच्चों को। तो ऐसे होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो बच्चे ये देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो हैं हमें ये चीज़ें बताते हैं, अच्छी बातें। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि ये बात अच्छी है और ये बात मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही। शुरू से ही हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप जैसे देख रहे हो कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम अगर बच्चे को वो शुरू से ही ये आदत डालें तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा ये चीज़।
1: जी, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से भी, जो हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, काफ़ी ट्रेडिशंस हैं, काफ़ी रिलीजन्स हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत देश भी है हमारा। और बच्चों को हर एक कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, ख़ास तौर के अपने कल्चर के बारे में, जिस कल्चर में वह रहते हैं, जो उनकी मदर टंग है, जिस भी प्रकार से आपके घर में ते फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही अभी हम बातें बहुत करेंगे और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। और आप गीत भी जरूर सुनती होंगी, आपका कोई पसंदीदा गीत हो जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो प्लीज आप गुनगुनाएं जरूर।
0: जब भी मैं कभी, मेरे मन पे किसी तरह का भी बोझ होता है या कुछ भी, मेरा मन ऐसे विचलित होता है, तो मैं हमेशा यही सॉन्ग गुनगुनाती हूँ और क्लास में इवन बच्चों को भी सुनाती हूँ। बहुत अच्छे से बोल है इसके
1: जी।

0: स्वागत है आप सभी का एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब वापस रुक करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है परवरिश और टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कंपैरिजन के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में कि बच्चों को किन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, जहाँ मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है जैसे बच्चे जब खाना नहीं खाते, ज़्यादा शैतानी करते हैं, उन्हें फ़ोन देकर बिठा दिया जाता है। फ़ोन के बारे में भी अभी हमने काफ़ी बातें की वैसे। और हाँ, बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाना हमारे लिए तो आसान काम है ही, लेकिन यह उनके मन मस्तिष्क पर भी काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। तो इसके बारे में दीप्ति जी, आपका क्या कहना है?
1: जी सेजल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने अपने सराउंडिंग्स में ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि पहले तो बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, तो मदर्स क्या करती हैं, वो उनको बोलती हैं कि बेटा मैं आपको ना अभी फोन पे ना एक वीडियो दिखाती हूँ, आप सिर्फ 5 मिनट्स उसको देखो, और उसी दौरान वो बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। जो बच्चा पहले कह रहा है मुझे भूख नहीं है, तो वो फोन जैसे ही मदर ऑन करती है तो बच्चा खाना शुरू कर देता है, वो बाइट देते जाती हैं, वो खाता जाता है। इस दौरान ये होता है कि बच्चा जिस तरह का प्रोग्राम देख रहा है ना, बच्चे की एक्साइटमेंट वैसी हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है कि कभी बार तो बिना चबाए ही उसको भोजन को अंदर निगल लेता है
0: जी।
1: तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये गलत बात है, बच्चे को कभी भी खाना खाते हुए फ़ोन देना ये बहुत गलत बात है, ऐसा मदर्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों की पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बच्चे भोजन चबाते नहीं हैं अच्छे से, अच्छे से खाना खाते ही नहीं है। वो एक्साइटमेंट के दौरान, जैसे कोई एक्साइटमेंट सीन आ रहा है तो वो उसके दौरान बच्चे फटाफट चबा लेते हैं या ध्यान ही नहीं देते, और बच्चा क्या खा रहा है बच्चे को वो भी नहीं पता, बच्चे को उसका टेस्ट ही नहीं पता चलता चीज़ का कि हम खा क्या रहे हैं, कौन सी वेजिटेबल खा रहे हैं, और उसको कोई जानकारी नहीं होती। और इस चीज़ के बाद ये है कि एक तो बच्चे की पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, दूसरा उसकी आंखों पे असर पड़ रहा है क्योंकि वो साथ में फ़ोन देख रहा है। इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढे, या मतलब उनको देखना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे जो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी आंखों का भी ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेंसेस उस टाइम पर डेवलप हो रही होती हैं, उनका शरीर फिजिकली तौर पर भी वो डेवलप हो रहे होते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, क्रिएटिविटी लेवल पर हर एक तरह से असर डलता है। क्योंकि जब खाना ही वह अच्छे से नहीं खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं आ पाएगी। तो अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई है कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर हम बच्चों को फोन दिखाकर खाना खिला रहे हैं, तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? हम बच्चों को किस तरीके से खाना भी खिला पाए और वो बच्चे फोन की तरफ भी ना भागे?
1: देखिए, ये तो आपको पता ही है बच्चों को जो है कहानियां बहुत पसंद है
0: जी।
1: मान लो कि आप कोई सब्जी खिला रहे हो बच्चों को, आप उसी सब्जी के रिलेटेड कोई कहानी बना लें, जैसे उनको बोलें कि बेटा ये देखो ये ग्रीन कलर की वेजिटेबल है, ये अगर हम खाएंगे ना हमारे पास बहुत ताकत आएगी। उनको बताइए कि ये पालक की सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, एक तो उनको वेजिटेबल्स का पता चल जाएगा, और उनको आप मतलब इस ढंग से एक बाइट तोड़िए, उनको ऐसे कोई एरोप्लेन बनाइए, ये देखो बेटा ये एरोप्लेन आ रहा है, मुंह खोलो आप, ये एरोप्लेन आपके मुंह में जाएगा, यूं करके ऐसे। मैंने तो मतलब अपने बच्चों को बचपन में भी चीज़ें अगर खिलाई है ना तो इस ढंग से ही कहानियां बना बना के, और बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग वे से ये चीज़ें देखते भी और सुनते भी हैं। ये नहीं कि मोबाइल के द्वारा ही बच्चे एंटरटेन होते हैं, बच्चों को अपनी माँ की बताई हुई कहानियां भी बहुत पसंद होती हैं। तो इसी तरह से बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। आप बच्चों को किसी और ढंग से खाना खिलाएंगे, बच्चे वो ढंग सीखेंगे, अगर आप फोन देंगे तो बच्चे फोन वाला ढंग सीख जाएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एज अ मदर बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं।
0: जी, अब तो ये जैसे खाने की हमने बात कर ली कि खाना हम बच्चों को कैसे दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अब कुछ बड़े हो चुके हैं, बच्चों को आदत डल जाती है फोन की, अब वो आदत छुड़ाना भी मुश्किल है। तो खाने के बाद खाना हम कहानियों से खिला देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं फोन ही चाहिए। तो उस जिद को कैसे तोड़ें और बच्चों को किस तरीके से वहां से डाइवर्ट किया जाए, कैसे उन्हें वास्तविकता से परिचय दिलाया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो माओं को खुद फ़ोन छोड़ना होगा। ये चीज़ मैंने एज अ टीचर भी देखी है कि मदर्स खुद फ़ोन में बिजी रहती हैं, बच्चे भी तो वही चीज देखते हैं। अगर बच्चे मान लो स्कूल से घर आ गए हैं तो मदर्स जो हैं कभी पूछती भी नहीं है, बेटा स्कूल में क्या किया, मैम ने क्या करवाया, ये चीजें नहीं पूछेंगे। तो हमें सबसे पहले तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। और आप बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाइए, जैसे बच्चों को मान लो संडे के संडे छुट्टी होती है, आप बच्चों को बोलो बेटा हम ना आपको पार्क में लेके जाएंगे, तो बच्चे क्या होते हैं सोशलाइज भी होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो पार्क में जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व होएं, बच्चों के साथ खुद खेलें। जैसे मेरे बेटे हैं तो जब मेरे को याद है वो छोटे थे ना तो उनको क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था, तो मैं क्या करती थी मैं खुद उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। इवन की काइट फ्लाइंग में मैंने उनकी बहुत मदद की है, मैंने खुद अपने बच्चों को सिखाया है कि काइट कैसे उड़ाते हैं। इससे क्या होता है कि मदर्स और बच्चों का इंटरेक्शन भी बढ़ती है और बच्चे खुद ही अपनी बातें जो है मदर से शेयर करते हैं कि माँ हमारे साथ बच्चा बन रही है, हमारे जैसे ही खेल खेल रही है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस ढंग से।
0: जी कहीं ना कहीं मदर और बच्चे की भी बॉन्डिंग बनती है, और आगे जाकर कभी बच्चा दिक्कत महसूस करता है अपनी जिंदगी में तो उसे आसानी होती है कि अपने पेरेंट्स से वो शेयर कर पाए और उसका सलूशन उन्हें मिल सके, क्योंकि पेरेंट्स को जितना एक्सपीरियंस हो चुका होता है लाइफ का, कहीं ना कहीं बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है।
1: जी
0: अब आप एक टीचर हैं तो आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे जो काफी आपके इश्यू लेकर आते होंगे कि बच्चे जो हैं बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी हैं या बहुत ज्यादा शरारती हैं, कि उन्हें किस तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत क्लेवर हो चुके हैं क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और टीचर्स के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से टैकल करते हैं और क्या आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज को टैकल करें?
1: जी सेजल, ये तो है, बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं आजकल के, उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी क्लास में भी कुछ बहुत नोटी बच्चे हैं, टॉकेटिव भी हैं, और ऐसे जैसे बैठे बैठे ही कोई शरारत कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो मैं इन बच्चों को टैकल करने के लिए क्या करती हूँ कि बच्चों को ड्यूटीज देती हूँ
0: जी,
1: कि क्लास में जैसे बेटा आपने जब सुबह आना है लाइट्स ऑन करनी है और डिस्पर्सल टाइम आपकी ड्यूटी है आपने लाइट्स ऑफ करनी है। तो ऐसे शरारती बच्चों को इसी तरह की क्लास की कोई ड्यूटी दे देती हूँ, तो बच्चे जो है ना अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मैम ने हमें ड्यूटी दी है तो हमें कुछ स्पेशल होगा, तभी तो हमें ड्यूटी मिली है, ऐसे थोड़ी ना मिली है। कई बार बच्चों को क्लास को मॉनिटर बना देती हूँ कि बेटा आप आज से ना क्लास के मॉनिटर हो, तो मैं कभी भी बाहर जाऊं तो आपने क्लास को कंट्रोल करना है पीछे से। तो ये होता है कि एक तो उनकी शरारतों पे ध्यान नहीं जाता, उनकी शरारतें कम हो जाती हैं और मेरा भी काम हो जाता है। ऐसे बच्चों को ऐसे ही टैकल किया जाता है। ये चीज़ है कि जो बच्चे जितने शरारती होते हैं ना वो बच्चे पढ़ने में भी उतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये चीज़ हमेशा मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। यही मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आप भी घर पे बच्चों को कोई ना कोई टास्क दें, कोई काम दें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जिससे बच्चों को थोड़ा प्राउड फील हो और बच्चों की शरारतें जो है ना वो अपने आप कम हो जाएंगी।
0: साथ ही कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ की पर्सनैलिटी ही एक्सट्रोवर्टेड होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के, शाय पर्सनैलिटी के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उन्हें सोशलाइज करना सिखाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ आज के टाइम पर बाहर निकलना, दुनिया में रहना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो उस हिसाब से बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है?
1: देखिए, स्कूल में तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बहुत से टास्क होते हैं
0: जी।
1: जैसे कि सुबह की असेंबली होती है, हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं उसमें, जैसे राइम्स बोलना, कंपेयरिंग करना, छोटे छोटे काफी टास्क होते हैं। जैसे क्लास में ही बच्चों को कोई गेम खिलाई जाती है, और हम पेरेंट्स को भी ये चीज बोलते हैं कि बच्चों को आप घर में मोबाइल के साथ टचिंग नहीं रखें बच्चों की। जैसे छुट्टी होती है, पेरेंट्स को भी संडे सैटरडे वीकेंड में छुट्टी होती है, कहीं किसी दिन त्यौहार पे छुट्टी होती है, तो हम पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं कि बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाइए, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखिए और बच्चों को थोड़ा सोशलाइज कीजिए, बड़ों से बात करवाइए, ताकि बच्चे जो हैं अपने मन के भाव जो हैं वो शेयर करते हैं। ये चीज़ हमने ना रिसेस टाइम में बहुत देखी है कि जो बच्चे क्लास में शाये होते हैं ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई डर होता है, लेकिन वो रिसेस के टाइम बच्चों की लैंग्वेज, उनकी टोन सब चेंज हो जाती है। तो उसी से हमें मतलब थोड़ा एस्टीमेट हो जाता है कि नहीं, ये शाई नेचर का नहीं है, इसकी हेसिटेशन इम्प्रूव करने की थोड़ी नीड है। तो एज ए टीचर हम उस पे फिर वर्क करते हैं
0: जी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रिसेस टाइम पे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि आसपास बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों के पास वैसे ही बच्चे एक फ्री एनवायरनमेंट में रहते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो साथ ही अब और बातें भी करेंगे, हॉबीज के बारे में बच्चों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब वक्त है एक और म्यूजिकल ब्रेक का और आपकी मधुर आवाज में एक गीत का।
1: जी, एक और सॉन्ग है जो कि मुझे गुनगुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक ये सॉन्ग सब लोगों को पसंद होगा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये रुलाए,

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और कार्यक्रम चल रहा है घर परिवार। अभी हम बात कर चुके हैं आज के समय की परवरिश की, मोबाइल के योगदान की, और इससे बचा कैसे जा सकता है। अब वक्त है बात करने का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में और हॉबीज के बारे में। आज के समय में बच्चे मल्टीटास्कर बन रहे हैं और माता पिता भी उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैम, आपका क्या इस पर विचार है?
2: देखिए, हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला जाता था, और हम भी ऐसा ही करते थे, पढ़ाई पे ही ध्यान होता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे तो कोई ध्यान नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से आजकल मीडिया में सारा दिखाया जा रहा है, बच्चे इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे। तो ये अच्छी बात है, बच्चों को ऐसा करवाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों को पूछ के, ये नहीं कि पेरेंट्स जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ही बच्चों को कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उसमें ये होगा कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, सिखाने के बावजूद भी बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा। ये अच्छी बात है, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। घर के आसपास जो भी कोई एकेडमी कुछ भी हो, बच्चों को वहाँ पर भेजिए और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनमें पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि आपको भी सहूलियत रहे, आप आसानी से उसको छोड़ने जा सकें, लेने जा सकें।
1: और जैसे आज के टाइम पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू पहले का टाइम जो रहा, और ख़ास तौर पर ये कंपटीशन का प्रेशर कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी बना रहता है कि किस तरीके से अपने बच्चे को इस कंपटीशन में आगे बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों पर भी इसका असर पड़ता होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं?
2: मैं यही बात आपको बोलूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए, उनको काम रहना चाहिए
1: जी।
2: मतलब ये नहीं कि अगर कोई दौड़ चल रही है तो उसमें आप चाहें कि आपका बच्चा भी दौड़े, ऐसा करेंगे तो आप खुद प्रेशर में रहेंगे, आप बच्चों को क्या संभालेंगे। इसीलिए आपको प्रेशराइज नहीं होना है, आपको प्रेशर में नहीं रहना है, ठंडे मन से सोचिए, आप बच्चे की पहले रुचि पूछिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ही बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए, और बच्चे को हर मुश्किल में संभालने के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ही तैयार नहीं होंगे, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, उसका सलूशन कैसे निकालेंगे? हाइपर नहीं होना आपको, आपको भी बच्चे के साथ ही जैसा बच्चा चाहे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ढलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चे जी की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है। साथ ही पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा हॉबीज क्लासेस, चाहे वो विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो या एग्जाम्स के बाद जो वेकेशन आती हैं, उनमें चाहते हैं कि बच्चे कुछ नई चीज़ें सीखे। तो एज एन पेरेंट कौन सी वो उम्र बच्चे के लिए ठीक रहती है कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज्वाइन करें, या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सी एज हमें रखनी चाहिए कि उस एज में बच्चा जो है एक्टिविटी सीख सकता है या नई एक्टिविटी उसके लिए इंट्रोड्यूस करनी चाहिए?
2: जी देखिए, शौक का या हॉबी का उसको सीखने की कोई एज नहीं होती
1: जी।
2: ये तो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कब और कैसे हॉबी क्लासेस या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। आप बच्चे पे कोई चीज़ थोपे ना, बच्चे जब ही खुद कहें तब आप उनको पार्टिसिपेट करवाइए, अपनी मर्जी से नहीं, और ना ही उन पे कोई प्रेशराइज करके उनको किसी चीज़ पे एक्टिविटी को अटेंड करने के लिए बोले।
1: आपकी क्लास में भी कई ऐसे बच्चे होंगे जैसे हर साल नई क्लास आती है, नए बच्चे आते हैं, तो बच्चों का इतना पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकता है, किस चीज़ में अच्छा है। तो आप ऐसी क्या ट्रिक अपनाती हैं बच्चों को समझने के लिए या बच्चों की एक्टिविटीज़ जानने के लिए कि बच्चा किस एक्टिविटी में रुचि रखता है?
2: जैसे कि हमारे फुल वीक में एक डे ऐसा होता है जब हम स्टोरी टेलिंग कोई कहानी सुनाते हैं
1: जी,
2: तो बच्चे बड़े खुश होके वो कहानी सुनते हैं। इसी तरह से मैं भी कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप भी कोई कहानी सुनाओ, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वो करके दिखाओ। तो बच्चे जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बच्चा कहता है मैम मुझे गाना आता है, मैं गाना सुनाऊं, मैं डांस करके दिखाऊं, मुझे एक अच्छी कहानी आती है, मुझे ये चीज़ बनानी आती है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की ये चीज़ बनानी आती है, मैम मुझे ड्राइंग करनी आती है। ये फिर हमें बच्चों से ऐसी टचिंग रखने से बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पीटीएम पे हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है इस चीज़ को बड़े अच्छे से कवर करता है, तो आप इसको उस पर पार्टिसिपेट करवाइए। हम काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इस चीज़ में। मैंने ये चीज़ देखी है कि इवन कि बच्चे जब रिसेस में खाना खाते हैं ना, लंच ब्रेक में, तो मतलब मुझे ये इवन पता होता है कि बच्चे को ये वाली वेजिटेबल जो है ना ये पसंद नहीं है, ये बच्चे को ये वाली वेजिटेबल पसंद है। तो जब हम पीटीएम पे पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो मैं पेरेंट्स से कई बार ये शेयर करती हूँ कि आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो ये चीज़ नहीं अच्छे उसको लगती, उसको ये खाने में ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि मैम आपको कैसे पता है, हमें तो बच्चे कभी ये चीज़ बताते नहीं है। तो मतलब टीचर जो है ना वो मतलब बच्चों के साथ अगर अच्छे से इंटरेक्ट करे तो बच्चे अपनी मन की बात आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स के साथ शेयर करते हैं।
1: कहीं ना कहीं आपकी बातों से अगर हम एक कंक्लूजन की कोशिश करें तो यही निकलता है कि बच्चों को जानने की जो चाबी है, उनके रहस्य का जो ताले की चाबी है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन ही एक ऐसी की है जिससे बच्चों को जाना जा सकता है, बच्चों को समझा जा सकता है, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसी वो क्या चीज़ें अपने मन में रखते हैं, किस इंटरेस्ट में रहते हैं, क्या शौक रखते हैं। हम मानते हैं कि क्लास में टीचर्स बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना भी जरूरी है ताकि बच्चों को हम जान सकें।
2: जी जी।
1: और एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि एज एन टीचर आप बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगी, और देश के विकसित होने में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में टीचर की बहुत एक अहम भूमिका रहती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपका अब तक कितना योगदान रहा?
2: मेरे खुद का 23 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं बच्चों को कुछ नई नई बातें सिखाती हूँ। मेरे को अगर घर में भी कोई परेशानी हो या कुछ भी हो तो मैं स्कूल आके सब भूल जाती हूँ कि बच्चों के हंसते हुए चेहरे देख के, बच्चों से बातें करके मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई परेशानी थी। ये सोच लो कि 5-6 घंटे मैं तो दूसरी दुनिया में रहती हूँ कि अपनी दुनिया होती है। तो एज अ टीचर भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि टीचर्स अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करके। इवन टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं, तो एक टीचर अगर बच्चे को गाइड करे ना तो आई थिंक कि मदर से ज़्यादा वो टीचर की बात सुनते हैं। तो टीचर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ये बिल्डर्स हैं, देश को बनाने वाले टीचर्स ही हैं। तो जिसने भी ये चीज़ कही है ना, तो ये फैक्ट है कि टीचर अगर चाहे तो बच्चों को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना नहीं। अगर पेरेंट्स टीचर को सपोर्ट करें तो हम बच्चे को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, उनकी मन की बात समझ सकते हैं। और मैं मदर्स को, आजकल की मदर्स को यही मैसेज दूंगी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना रोल एक मदर का है ना उतना ही फादर का भी है। ये नहीं कि फादर अगर जॉब करते हैं तो फादर को बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। आप भी बच्चों से पूछिए कि आज स्कूल में बच्चे ने क्या किया, टीचर ने क्या करवाया, बेटा आपने डायरी लिखी है, आपने मैम ने कोई टेस्ट दिया है। दोनों का उतना ही रोल है जितना कि एक टीचर का है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़िए, जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको पाला है, मैं यही चाहती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स भी उतने ही प्यार से, उतने ही निकटता से अपने बच्चों के साथ संबंध बनाइए और उनकी मन की बातें समझिए, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे आपसे दूर ना हों।
1: और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा?
2: मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी मिली। मैंने अपने मन की बातें जो हैं वो शेयर की यहाँ पे आके, और सेजल आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। कहीं ना कहीं इन्होंने मेरा पुराना वक्त मुझे याद दिला दिया, अपने बच्चों के साथ उनका बचपन याद दिला दिया। और FM 90.0 रेडियो विदस्ता में आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मैं आगे भविष्य में भी ये चाहूंगी कि आप मुझे फिर से बुलाएं और हम इसी तरह से प्यार भरी बातें करें
1: जी। और अब वक्त है आप सभी को एक गीत के साथ छोड़े चले जाने का, तो आखिर में बच्चों के लिए आप कौन सा गीत चाहेंगी जो आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहें और बच्चों को डेडिकेट करना चाहें?
2: रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, ये प्यारा सा गीत आप बच्चों को सुना दीजिए
1: जी। अब मुझे भी दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो चला है अब मेरे भी जाने का और आपको छोड़े चले जा रहे हैं इसी मधुर गीत के साथ। अब मुलाकात होगी अगले अंक में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
2: धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान थे श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भारत सुपोरी।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल बट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को ये नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित हैं, मगर 1990 में वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल बट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां स्थिल है, देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है, सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है, मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है, चीथड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां किसी का भाई किसी का बाप पति किसी का, मौत की बेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीतकार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे। आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सभी को मेरी नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जो सिखाएगी कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था जो हम

हमेशा बहुत ही उदास रहता था और अकेला बैठकर मन ही मन सोचता रहता था। उसकी उदासी का मुख्य कारण यह था कि मेंढक का पूरे जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खेल सके, मस्ती कर सके और अपनी बातें कर सके। एक दिन उसी जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना दुख सुख बता सकूं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बहुत खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों तक एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ साझा करने लगे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या। दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे जिसे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए भोला चूहा एकदम इसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। ऊपर आसमान में उड़ता बाज यह सब देख रहा था। बाज ने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो सोचने लगा, आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर मेंढक सहम गया, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज ने मेंढक को भी खा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों का नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसलिए कभी भी दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वरचित कहानी है तो आप हमें भेज सकती हैं। अगर वो कहानी हमें अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुँचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: नमस्कार, FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। तो लघु कथाओं की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हाजिर हूं आपके बीच में एक नई लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है ममता माँ की। और इस लघु कथा के रचनाकार हैं सीहोर मध्य प्रदेश के श्री धर्मराज देशराज। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे ही इस ममता माँ की भावनाओं से जुड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं हम आज की ये लघु कथा। सेठ धनीराम अपनी किराने की दुकान पर ना उधारी की कापी देख रहे थे कि किस पर कितना बकाया है। तभी एक महिला आई और बोली, सेठ जी, मुझ पर आपके कितने रुपए निकल रहे हैं। सेठ धनीराम ने अपनी कापी देखी और बोले, पूरे 500। वो बोली, अरे कुछ दिन पहले तो आपने 450 रुपए बताए थे। धनीराम बोले, भाई ब्याज भी तो लगता है ना। उसने 500 रुपए निकाल के महिला ने सेठ जी को दे दिए और बोले, सेठ जी, मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई आपसे सीखे। ये मेरी बेटी को स्कूल से स्कॉलरशिप मिली थी, चलो आपका रुपया तो चुकता हो गया ना। एक बोझ था उतर गया। महिला तो चली गई, सेठ धनीराम विजयी मुस्कान लेकर बैठे रहे। दूसरे दिन वही महिला सेठ धनीराम की दुकान पर आई और बोली, सेठ जी, मैंने कल आपको आपका पूरा हिसाब चुकता किया था, आप उसमें से 100 रुपए वापस दे दो, जो आपको जल्दी चुका दूंगी। तब सेठ धनराम बोले, भाई मेरे यहां बस यही नहीं होता, रकम आने के बाद वापस नहीं दी जाती। तब महिला बोली, अच्छा मुझे 2 किलो चावल उधार दे दो, उनसे काम चला लूंगी। धनराम ने 2 किलो चावल तोल कर दिए और महिला चली गई। कुछ देर बाद सेठ धनीराम का बेटा आया और उससे बोले, बेटा आज शनिश्चरी अमावस्या है, मैं शनि मंदिर होकर आता हूं, तुम दुकान संभालना जब तक मैं नहीं आता। मेरे पास कुछ खुले पैसे और एक 5 का फटा नोट है, उसे ठिकाने लगाकर आता हूं। ऐसा कहकर सेठ धनीराम दुकान से निकल गए। अब मंदिर के बाहर मांगने वालों की भीड़ देखकर जल्दी से मंदिर के अंदर दाखिल हो गए और लौटते समय जेब से खुले पैसे निकालकर जल्दी जल्दी भिखारियों को देते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर उस महिला पर पड़ी जो भीख मांगने वालों की लाइन में बैठी थी। सेठ धनीराम ने पूछा, तुम यहां भीख मांग रही हो, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोली, सेठ जी, मेरी बेटी सरकारी अस्पताल में भर्ती है, मैंने तुम्हारी दुकान से 2 किलो चावल उधार लिए थे, उन्हें दूसरी दुकान पर आधे भाव में बेचा और डॉक्टर की लिखी एक दवा की शीशी खरीदी, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो यहां भीख मांगने बैठी हूं कि शायद कुछ मिल जाए। सेठ जी, दुनिया में ईमानदारी भी कुछ चीज है, मरने के बाद सब कुछ यहीं रहना है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। बस यही सोचकर गलत काम नहीं करती, वरना मुझे जहां चौका बर्तन करने जाती हूं ना, वहां चाहूं कितना कुछ कर लूं किसी को पता भी ना चले। परंतु मैंने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा है, और हां कभी छोड़ूंगी भी नहीं। सेठ धनीराम ने जेब से कुछ पैसे निकालिए और निकालकर उसको दे दिए और वापस दुकान पर आ गए। अब उनके कानों में उस महिला की कही हुई बात गूंज रही थी कि ईमान भी कोई चीज होती है, सब रखा कर रखा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। उन्हें अपने आप से गलानी होने लगी। दो तीन दिन बाद सेठ धनीराम सुबह ही उस महिला के घर पहुंचे। उन्हें मालूम हुआ कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। धनीराम ने एक से पूछा कि कौन से सरकारी अस्पताल में है इनकी बेटी। तब उसे बताया कि इनकी बेटी पहले सरकारी अस्पताल में थी, किंतु सुधार न होने के कारण प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गई हैं। पता लगाते लगाते सेठ जी उस नर्सिंग होम तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सड़क पर भीख के लिए कपड़ा बिछाए वो महिला बैठी हुई रो रही थी, और लोग आसपास खड़े देख रहे थे। धनीराम ने महिला से पूछा, भाई ये सब क्या है? तो महिला बोली, सेठ जी मैंने अपनी बेटी के उचित इलाज के लिए अपनी पट्टे वाली झोंपड़ी तक बेच दी, मैं बर्बाद हो गई, लेकिन मेरी बेटी बच नहीं सकी। अब नर्सिंग होम वाले अपना बकाया मांग रहे हैं, तब मेरी बेटी की लाश मुझे देंगे। बस इसलिए सड़क पर कपड़ा बिछाकर दया की भीख मांग रही हूं। ये सुनकर सेठ धनीराम की आंखों में आंसू आ गए, और दुखी होते उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना बटुआ निकालकर कपड़े पर डाल दिया और बोले, हे देवी, तुम संसार की सबसे अच्छी माँ हो, तुम्हें प्रणाम करता हूं। और दोनों हाथ जोड़कर सेठ धनीराम सिर झुकाकर बड़बड़ाते हुए वहां से चल दिए कि साथ में कुछ नहीं जाता भाई, कुछ नहीं जाता भाई, कुछ नहीं जाता भाई। क्या?

0: धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।
4: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत, कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
5: आज का जो ललवाक है ये बड़ा ही विचित्र ललवाक है, इसमें आपको साइंस भी दिखेगा। मैं इस ललवाक की बात आपको बताता हूँ। लल कहती है, बान गोलते प्रकाश आव जुंगे, चंद्र गोलते मुती सेथ, सेथ गोलते कहते ना कुने, गई भूल वह सुहा विसर्जित कहते। इस वाक में आपको सुनाई देगा कि बान गोलते प्रकाश आव जुंगे, यानी सन जब डूब जाता है, जब खत्म हो जाता है, जब डिसॉल्व हो जाता है, तो चंद्रमा निकल के आता है, मून चमकना शुरू कर देता है। और जब वही मून डिसअपियर हो जाता है तो जो कॉन्शियसनेस की लाइट है वो निखर के सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस भी डिसॉल्व हो जाता है तो बचता क्या है? बचता वो शून्य है, बचती वो एम्प्टीनेस है। और उस एम्प्टीनेस में ये भूर वो अस्वह, तीनों जो कॉस्मिक प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों उस एम्प्टीनेस में, उस शून्य में खत्म हो जाते हैं। अगर आप आज साइंस भी देखेंगे तो न्यूरोसाइंस हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन का एक आउटकम है, लेकिन जो लल कहती है उसके कहने के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रेन का आउटकम नहीं है, बल्कि ब्रेन कॉन्शियसनेस का ही एक आउटकम है, ब्रेन रिसीवर है, ब्रेन रिफ्लेक्टर है उस कॉन्शियसनेस का। जैसे चंद्रमा जो है वो बिना सूर्य की लाइट के चमक नहीं सकता, वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो बिना उस अवेयरनेस के फंक्शन नहीं कर सकती। यानी जैसे जैसे अवेयरनेस अपना विस्तार करती है, जैसे जैसे चित्त का विस्तार होता है, उस चित्त के विस्तार के साथ साथ ही मैं उस नीचे के प्लेन से ऊपर के प्लेन्स की ओर मुड़ना शुरू हो जाता हूँ। और एक समय ऐसा आता है जब मुझे फिजिकल लाइट, जब मुझे फिजिकल अवेयरनेस से परे हट के मुझे उस कॉन्शियस अवेयरनेस, उस कॉस्मिक अवेयरनेस की ओर लेके जाता है, और उस कॉस्मिक अवेयरनेस से भी जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं एक अल्टीमेट शून्य में पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा अगर सूर्य की लाइट खत्म हो जाए तो चंद्रमा की लाइट से हम देखते हैं, अगर चंद्रमा की लाइट अंधकार हो जाए तो हम मन की आंखों से देखते हैं, लेकिन जब मन की आंखें भी चली जाएं तो फिर वहां शून्य ही बचता है उस अंधकार में, बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में दबकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की।

जो बरसों से बस गई है उसके सीने में जागती है तमाम रात, झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें, जो मुझे न सोने देती हैं न रोने देती हैं।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: सही रास्ता सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स सपने आपके जिम्मेदारी हमारी
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक है बाबुल। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत महफिल में, जहां अल्फाज रोशनी बनके चमकेंगे और सुरों की बारिश यादों को गीला करेंगी। ये है रेडियो वितस्ता 90.0 FM, जहां हर एहसास एक गीत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। चलिए शुरू करते हैं एक नए रेट्रो हिट्स का अंक, बाबुल। बाबुल, बाबुल एक बहुत गहराई भरा शब्द है जो बेटी की विदाई, पिता का प्यार और घर छोड़ने का दुख बयां करता है। वो जो छोड़ा था मैंने आंगन, आज भी यादों में महका करता है। ढल गया आंगन का सूरज, अब अंधेरा छाएगा। बाबुल की लाडली बेटी एक दिन पराई हो जाएगी।
1: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझ

बाबुल के चेहरे पे मुस्कुराहट थी लेकिन आंखें नम थी। जिसे कल तक गोद में खिलाया आज वो दुनिया की शान थी।

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

हर गीत एक नया मोड़ लाती है, हर याद एक नए इंतज़ार की दस्तक देती है। आज की महफिल यहीं तक, पर कहानी अभी बाकी है। फिर मिलेंगे नए सुरों नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक था बाबुल, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान हैं श्रुति सयाल, विशेष आभार ईशान खन्ना, सहयोग आरजे गिरनी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत करेंगे भारत सोपुरी।

0: नमस्कार, प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हमारे खास प्रोग्राम युवा ही देश का भविष्य में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो न केवल तकनीक की दुनिया में माहिर है बल्कि कला और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक चमकता सितारा है। हमारे साथ है श्रुति सयाल, जो वर्तमान में बिजनेस एनालिस्ट हैं और साथ ही अपनी MCA की पढ़ाई भी कर रही हैं। श्रुति, आपका रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भारत जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस रेडियो स्टेशन पर आऊं और अपने विचार प्रकट करूं। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: श्रुति, आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका काम असल में है क्या।
1: मेरा काम असलियत में ये है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारा बिजनेस ये है और हमें इस बिजनेस को डिजिटल करना है, अपनी एक वेबसाइट बनवानी है, हमें टेक्निकल वर्ल्ड में कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करा सकते हैं सोशल मीडिया पर, गूगल पर और भी बहुत से स्थानों पर, जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सके और उनका बिजनेस बढ़ सके। तो हम उनके सिनेरियो को देखते हुए जो भी जिस भी कंडीशन में वो लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उनसे कम्युनिकेशन के बाद हम एक सॉल्यूशन पर आते हैं और उसके साथ हम आगे जाते हैं।
0: आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कोई भी समाधान देते हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उनसे क्या क्या जानकारी पहले लेते हैं ताकि आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें।
1: हम बेसिकली उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं कि क्या वो एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक हैं या फिर उनकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एक रिक्वायरमेंट को एक गैदर करके एक प्रपोजल बनाते हैं, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट की उनके बिजनेस को क्या क्या डिजिटली प्रेजेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या उन्हें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है या फिर उन्हें ऑनलाइन प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम एक स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं, उनकी वेबसाइट में क्या क्या होगा, क्या हम उन्हें डिजाइन कैसा देंगे, किस टेक्नोलॉजी में उनकी वेबसाइट बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, फिर उनकी वेबसाइट को सर्वर पर डिप्लॉय कर देंगे। अगर वो मार्केटिंग में चाहते हैं तो हम उनकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करेंगे या फिर हम गूगल पर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
0: आप एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम करती हैं, तो आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद अब आप जॉब करती हैं, तो एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर जब आप किसी भी क्लाइंट को समाधान देते हैं तो दिल में, मन में कितनी संतुष्टि होती है?
1: बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं चाहती तो अपनी कोडिंग करियर भी परस्यू कर सकती थी आगे, पर मैंने ये प्लेटफॉर्म बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन इसलिए चुनी जिससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, उन्हें एक समाधान दे सकूँ, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।
0: श्रुति, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपसे अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यंग जेनरेशन से बात कर रही हूं, आपसे बात कर रही हूं, फॉर श्योर बहुत थैंक यू सो मच। बट अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो ये है कि मेरा नाम श्रुति है, मैं 22 साल की हूँ, अम्बाला में रहती हूँ और एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज में वर्क करने की। एज एन इंटर्न मैं वहाँ पर गई थी, उसके बाद मैंने कोडिंग में अपना पैर जमाया, कोडिंग सीखी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पूरी करी, बट वो कहीं ना कहीं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मेरे कॉलेज टाइम का, मेरे स्कूल टाइम का, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े रहे और वहाँ की कंपनी के बॉस ने मुझे मौका दिया कि क्यों ना आप अपने स्किल्स को आगे और कंटिन्यू करो और हमारी कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल परस्यू करो। तो उसके साथ ही मैं आगे अब बढ़ती जा रही हूँ और इसी को आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे बढ़ाऊंगी।
0: बहुत खूब। श्रुति, मैंने सुना है कि आप थिएटर यानी रंगमंच से भी जुड़ी रही हैं, स्ट्रीट प्ले और वन एक्ट प्ले का अनुभव आपके प्रोफेशनल करियर में कैसे काम आता है?
1: स्ट्रीट प्ले हो या वन एक्ट प्ले, हर जगह पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। हमें कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, क्लाइंट से नहीं तो अपने कलीग से बात करती हूँ, डेवलपर से बात करती हूँ, डिजाइनर से, टेस्टर से, किसी भी इंसान से मैं बात करती हूँ, तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सामने वाले के सामने हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हो सकता है कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो, बट अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस बात को बोलने का, तो शायद हम उतने अच्छे से काम ना कर पाए। तो हाँ, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, तो ये जस्ट बिकॉज मैं थिएटर में थी, मेरे कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ।
0: श्रुति, जहाँ तक रंगमंच का सवाल है, रंगमंच हमेशा हमें एक अच्छा इंसान बना देता है, हमें वो एज अ पर्सन ग्रो होने का मौका देता है, हमें बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप थिएटर के साथ जुड़ी हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हैं, तो ये आपके करियर में आगे भी बहुत सारा हेल्प करता रहेगा। आपके लिए संगीत क्या मायने रखता है?
1: संगीत मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप अपनी फैमिली में होते हो या अपने आप जॉब पर होते हो, कहीं पर भी होते हो, आप एक सिनेरियो में एक सीक्वेंस के साथ आप काम करते रहते हो, तो माइंड में बहुत सी चीजें आ जाती है। तो एक अच्छा म्यूजिक जो होता है आपको टेंशन फ्री करता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जिसे सॉफ्ट म्यूजिक हम सुनते हैं या फिर पार्टी म्यूजिक सुनते हैं, वो एकदम से मूड स्विच कर देता है।
0: तो आप मानते हैं कि म्यूजिक एक थेरेपी हमें देता है? और अगर ऐसा है तो आप किस तरीके का संगीत सुनते हैं? आपकी पसंद का कोई भी गीत हो जो हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, कृपया बताएं।
1: मुझे वैसे तो बहुत से सॉन्ग्स पसंद है, बट स्पेसिफिकली मैं रेट्रो म्यूजिक भी सुनना पसंद करती हूँ। तो उसमें मुझे लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, ये वाला गाना बहुत पसंद है।
0: आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी बिल्कुल,
0: प्लीज।
1: लिखे

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रुति सयाल से। इस कार्यक्रम का नाम है युवा ही देश का भविष्य। हमें बहुत अच्छा लगता है युवाओं से बात करने, ताकि हम ये जान सकें कि वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और देश के लिए वो क्या कुछ करना चाहते हैं। श्रुति से अगला प्रश्न पूछते हैं। श्रुति, आप रोटरैक्ट क्लब के सचिव भी रही हैं, एक लीडर के तौर पर आज के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: जैसे कि मैं 2022 से 2023 तक एक सेक्रेटरी के रोल में थी, उस रोल में ने मुझे सिखाया कि आपकी डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती है
0: जी,
1: कि आप किस पोजीशन पे हैं
0: जी।
1: अगर आपके अंदर एक जील है, एक पावर है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। एक सिचुएशन उस टाइम पर ऐसी आई कि जो क्लब के प्रेसिडेंट थे वो अवेलेबल ही नहीं रहे काफी टाइम तक, तो उस टाइम को ना घबराते हुए मैंने उस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, क्यों ना मैं एज अ प्रेसिडेंट काम करूं
0: जी।
1: मैंने पूरे क्लब को संभाला और उसी चीज ने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, कॉन्फिडेंस दिया है, अपने ऊपर विश्वास इतना दिलाया है कि हाँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं सीनियर्स के साथ रहती हूँ, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जूनियर हूँ या मुझे एक साल हुआ है, मैं हर चीज कर सकती हूँ अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है तो।
0: तो इसके साथ ही जुड़ता हुआ मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, जितने भी श्रोता हमारे आपको इस समय सुन रहे हैं, खास करके आप युवतियों को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखें और लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। आप कोशिश करेंगे, छोटी से छोटी छोटी छोटी कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि आज ही आप बिल्कुल अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा या फिर आप बहुत अच्छे एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे, पर छोटी छोटी चीजों से कोशिश करिए। अपने आप को बाउंडेड मत रखिए कि हाँ कि अच्छा ऐसी कंडीशन है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत रखिए अपने जीवन में। हमेशा अपने आप के अंदर एक ऐसा जुनून रखिए कि नहीं, अगर जो गलत है तो गलत है और जो सही है वो सही है, और इसके साथ ही आगे बढ़ते रहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे देश में युवा हो या युवतियां हो, आमतौर पर यह कहा जाता है कि देश की जो ताकत होते हैं वो देश के युवा होते हैं, और आज आपको जितने भी अवसर मिल रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कार्य करने के लिए, तो कितनी संतुष्टि होती है कि आप भी देश निर्माण में कार्य कर रही हैं।
1: बहुत संतुष्टि होती है अगर मुझे कोई सुन रहा है और मेरी बातों से किसी के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, या फिर अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने पड़ोस में हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, अगर मेरी बातों का किसी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझसे वो प्रेरित हो रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के विकास पर भी इम्पैक्ट डालता है।
0: आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, ये मैंने आपके डिटेल से पढ़ा है, और आपको घूमना बहुत पसंद है। क्या नए लोगों से मिलना और नए विचार साझा करना आपके भविष्य के लक्ष्यों में मदद करता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, और ये चीज मुझे मेरे जेनेटिक्स से मिली है, क्योंकि मेरे घर पे सभी बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, सबको ही बहुत पसंद है लोगों से बात करना, थॉट्स एक्सचेंज करना, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि आप उस चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि क्या हम किसी से क्या नॉलेज ले सकते हैं, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, और वो मेरे जीवन में बहुत चीज काम आती है कि मैं आगे, और तभी मुझे पसंद भी है काफी लोगों से बात करना, जैसे कि आज मैं आज आपसे मिली हूँ और आज मेरे आपसे थॉट एक्सचेंज हुए हैं, मुझे कुछ नया जानने को मिला है और मैं आपसे कुछ सीख कर ही जाऊंगी आगे।
0: अभी आपके करियर की शुरुआत हुई है, आपका इमीडिएट लक्ष्य क्या है?
1: मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो चाहे जिस भी जॉब रोल में मैं पूरा करूं, मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे, अपने फाइनेंसेस के लिए भी कमाना चाहती हूँ जिससे मैं डोमिनेंस रहूँ या फिर मुझे कोई कुछ कह ना सके। मैं उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर के या बाहर के किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे बहुत नाजों से पाला है और बहुत फाइनेंशियल या फिर कंडीशन जो भी है उसमें मेरा हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी फैसिलिटी में, एंड कभी डिफरेंस भी नहीं किया मुझ में और मेरे भाई में. तो बस मैं यही चाहती हूँ, मैं जिसके साथ भी हूँ या फिर जिसके साथ अभी हूँ उनको फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ और आगे वो भी कह सके कि हाँ ये मेरी बेटी है.
0: श्रोताओं, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो बदलाव आ रहा है वो एक सोच का बदलाव आ रहा है. एक समय था जब महिलाएं किसी भी डिसीजन में उनका कोई रोल नहीं होता था. हम श्रुति से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लें, अपने जिंदगी में, अपने परिवार में जो भी डिसीजंस हो उसमें उनका साथ होना चाहिए. अगर ये सोच श्रुति रखती है तो ये हमारे देश की हर एक युवती को रखना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, आने वाली जिंदगी उनकी अपने दिशा से हो, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो लीडर्स बने, वो कंपनियों की शुरुआत करें और उन कंपनियों की सीईओ भी बने ताकि हमारा देश आगे बढ़े. और ये हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि देश बदल रहा है. श्रुति, चलते चलते उन युवाओं के लिए कोई एक बात जो BCA या MCA कर रहे हैं और कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे और साथ में क्या चुनौतियां हो सकती है और क्या फायदे हो सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि सब अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहे, फोकस्ड रहे, डिटर्मिनेशन, बस यही एक की है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी. हाँ, हो सकता है जैसे कि मैं भी BCA कर मैंने जॉब करी और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस है MCA कर रही हूँ और उसके साथ साथ भी मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी दिनचर्या कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस से बिल्कुल आकर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता. बट स्टिल इसके बीच में भी मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना चाहिए. तो मैंने PMP सर्टिफिकेशन में भी अप्लाई करा हुआ है. तो दिन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, हैक्टिक हो जाएगा, बट जब आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपके हाथ में वो आपकी ड्रीम जॉब होगी या फिर जिस भी करियर में आप परस्यू करना चाहते हो वो जब आपके पास होगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आई वॉज राइट. टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको यूटिलाइज करना और उसको फुलेस्ट यूज़ करना. ऐसा नहीं है कि अपनी इंजॉयमेंट में भूल जाती हूँ उसके चक्कर में कि नहीं मैं पूरा दिन ही ऐसे जा रहा है या फिर मेरे वीकेंड्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा ही हमें वर्क प्लेस पे भी सिखाया जाता है कि लर्निंग कभी नहीं रोकनी चाहिए. लाइफ में हमेशा हर दिन आपको कुछ नया सीखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ तो हेक्टिक होगी बट जो भी आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला. सो स्टे फोकस्ड, डिटरमाइंड.
0: इसके लिए मैं एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी है तो वो मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं से, वो ये है थिंक बिग एंड एक्ट. आप बड़ा सोचिए और उस पर कार्य करिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी. एक महिला होने के नाते ये बताइए कि कार्यस्थल जहां आप काम करती हैं, आवागमन या आप एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और डेली लाइफ में कितना सुरक्षित आप महसूस करती हैं एज अ वुमन?
1: मैं अपने वर्क प्लेस पर और जो भी रूट में लेकर जाती हूँ मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ फील करती हूँ. इसके पीछे का रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई इंसान हमें सिक्योर या इनसिक्योर फील नहीं कराता है, शायद हम में ही उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम जहाँ पर भी है वहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली बैठे या फिर हम कॉन्फिडेंटली वर्किंग करें. तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई थर्ड पर्सन आके कुछ पोक कर जाएगा या फिर आपको कुछ इनसिक्योर अनकंफर्टेबल फील करा देगा, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता. बाकी देर इज़ अ सिचुएशंस, आती है सिचुएशंस, बट उसमें आपको कॉन्फिडेंटली एंड बोल्डली उसका रिप्लाई करना चाहिए. पर मुझे अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील होता है क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और मेरा वर्कप्लेस काफी सेफ भी है.
0: बहुत अच्छी बात कही श्रुति आपने. इस कार्यक्रम में जिसमें हम आज बात कर रहे हैं इसका नाम है युवा ही देश का भविष्य है और मुझे वाकई लग रहा है कि जब हम युवाओं से बात करते हैं हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखता भी है. आज के इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि श्रुति ने हमें बताया कि कैसे तकनीक कला और समाज सेवा को एक साथ साधा जा सकता है। श्रुति, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ अम्बाला कैंट के इस FM रेडियो स्टेशन पर आने के बाद आपको यहाँ आके कैसा लगा, और अंत में आप सभी सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मुझे इस रेडियो स्टेशन पर आकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने सभी लोगों से बात करी, आपसे बात करी। मुझे पता चला कि लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, क्या हम नया सीख सकते हैं। और इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग गेम, आप जितना सीखते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। अगर एक लाइन में कुछ मैं संदेश देना चाहूँ, जैसे कि अभी हमारा न्यू ईयर मंथ भी चल रहा है, तो मैं उसमें बस एक ही बात कहना चाहती हूँ एक कोट में, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, अब जो हासिल है अब उसी से सवाल करे। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी बातों में दिन से रात करे, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी युवा अपने विचारों को यहाँ पर आकर रखना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो इस रेडियो स्टेशन पर आ सकते हैं मेरी तरह, और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं ताकि हम किसी का मार्गदर्शन कर सकें।
0: दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। यहाँ हर धड़कन में नई उमंग है, और आपको आज के मेहमान श्रुति के एक और गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं, और हम आपसे चाहेंगे इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रुति सयाल। विशेष आभार ईशान खन्ना। सहयोग आरजे किरणी। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: dala झेल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता। हम सफर जिंदगी का
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: ताजमहल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता। हम सफर जिंदगी का
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio vitasta hamsafar zindagi ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
1: Sunan khatar haryanvi song करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्तां से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरणी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं और रेशो में भी लड़कियां जो हैं वो लड़कों के बराबर हो गई हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपके पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि भाष से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बह जानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्टनर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी, बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं, जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूँगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताए जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाए कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਸਿਜ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
4: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
3: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ
2: 90.0 ਮੇ

0: रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर।
1: भारत जी राम राम
0: का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं भारत सोपोरी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता अंबाला छावनी से, जो प्रसारण करता है सामुदायिक रेडियो जिसका लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमारे अंबाला के क्षेत्र के लिए मिला है। और मैं इस समय पटल पर देख रहा हूँ मेरे साथी रेडियो अपना रेडियो से चरखी दादरी से प्रीतम जी हैं, और हमारे साथ आज के जो मेहमान है वो पहले ही जुड़ चुके हैं ग्राम घीखारा चरखी दादरी से श्री विपिन कुमार जी। और मैं सभी हरियाणा के श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है राम राम हरियाणा। और आप सभी इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव देखते हैं और साथ में हरियाणा के सामुदायिक रेडियोज पर इसका सीधा प्रसारण भी सुनते हैं। इस समय ये आवाज़ चरखी दादरी अम्बाला और अन्य रेडियो स्टेशंस पर भी लाइव जा रही है। इस कार्यक्रम में आप सभी को अगर जुड़ने का मौका चाहिए वो हम हमेशा हर दिन देते हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं, अगर आपने जिंदगी में आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है आप उसके बारे में बता सकते हैं हमें। साथ में आपकी आवाज़ सारे हरियाणा के वासियों तक यानी हरियाणा के सभी श्रोताओं तक पहुँचेगी रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और अगर आपके आसपास कोई समस्या है, कोई कमी है, आप वो भी बता सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान होते हैं जो निदेशक है हरियाणा ग्रामीण संस्थान करनाल से। इस कार्यक्रम के लिए जुड़ने के लिए आपको कॉल करना होगा 88 16 904 904। नंबर एक बार फिर बता देता हूँ 88 16 904 904। कुछ श्रोताओं का कहना है कि हम इस कार्यक्रम के लिए इस नंबर पर कॉल करते हैं और कॉल कनेक्ट नहीं की जाती है। कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से या स्टूडियो में किसी कारणवश हम आपकी कॉल को नहीं जोड़ पाते हैं। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपकी कॉल को हम ना जोड़ें, पर जब कोई भी श्रोता हमें कॉल करता है अगर उसका कॉल नहीं जोड़ा जाता है तो निराशा जरूर होती है। हम आपसे उसके लिए खेद करते हैं और आप कोशिश जारी रखिए, जब हमारे स्टूडियो में हमारे व्यक्ति होते हैं वो आपको कनेक्ट हमारे साथ जरूर करते हैं। आज है 26 मई 2026 मंगलवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी 2083 विक्रम संवत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ कुछ समय में जुड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि रेडियो अरावली नारनौल से मनीष जी भी जुड़ेंगे और यमुनानगर रेडियो सांझा से भी हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ेंगे। फिलहाल मैं स्वागत करता हूं प्रीतम जी का, और प्रीतम जी अपनी सुंदर और मधुर आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, फिर हम आज के मेहमान की ओर चलते हैं। जी प्रीतम जी, प्रीतम जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रीतम जी आपको मेरी आवाज जी, मैं
1: हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर।
0: मैं कह रहा हूँ कि आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करें और आपकी मधुर वाणी में हम कुछ सुनना चाहते हैं।
1: आ रही है सर भारत जी, आप
0: जी बोलिए। फैन अभी शेयर किया नहीं मैंने। हाँ प्रीतम जी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। चलिए
1: भारत जी राम राम।
0: हाँ बोलिए।
1: चलिए सभी शराब का स्वागत।
0: जी बोलिए बोलिए बोलिए।

0: मैं सभी श्रोता सभी दर्शकों को मेरी पुनः सभी को राम राम और मैं सरपंच साहब का स्वागत करता हूँ। सरपंच साहब हमारे चरखी दादरी जिले से हैं, जो हमारे दादरी के लगता हुआ गांव है दिकाड़ा, वहां से। तो सरपंच साहब आपका स्वागत है। एक बार आपके गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपको अम्बाला में, यमुनानगर में, नारनौल में और पलवल में, लगभग पूरे हरियाणा के सामुदायिक और गोंदर के अंदर करना है, पूरे हरियाणा के सामाजिक देखा जा रहा है
1: जी। विपिन कुमार जी आपका, मैं
0: तो सरपंच थोड़ा सा के बारे में बताइए,
1: आपका इंटरनेट का इशू।
2: राम राम जी। सबसे पहले तो आपके
1: जी
2: और आपके जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उनको सभी को राम राम।
1: राम राम।
2: मेरा चरखी दादरी जिला में गांव आता है, छोटा सा गांव है, गांव गिकाड़ा।
1: जी जी बताइए बताइए बताइए।
2: आज हमारे गांव में जी अब तक हरियाणा सरकार द्वारा जो भी ग्रांट प्रदान की जाती गई है उनको अच्छे प्रकार से लगाया गया है और गांव में काफी विकास हुआ है।
1: विपिन,
2: जैसे कि
1: विपिन जी आपको मैं रोकता हूं। विपिन जी आप आज के हमारे इस एक घंटे के कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं। आज आपकी बात हम सभी सुनना चाहते हैं और विस्तार में सुनना चाहते हैं। आप युवा सरपंच है, आप कब सरपंच बने हैं, आप अपने गांव के बारे में जानकारी दीजिए। जब से आप सरपंच बने हैं तब से आपने कौन कौन से कार्य किए हैं और किस तरीके से आप अपने गांव को देश का सबसे अच्छा गांव बनाना चाहते हैं, अब विस्तार में बोलें। आज हम सभी यहां पर आपको ही सुनने आए हैं, केवल एक छोटा सा उत्तर देके आप शांत ना होइए। हमें आप उस तरीके से बोलिए कि हमें आपको रोकना पड़े, नहीं तो आप बोलते रहिए अपने गांव के बारे में, ताकि हम भी समझ पाए कि आपका जो गांव है, गांव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गांव तो गांव है और उसी गांव से हमारा देश बनता है। गांव किस तरीके से आगे बढ़ रहा है आपके नेतृत्व में, आप विस्तार में हमें बताएं। विपिन जी।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल
1: जी बताइए।
2: हमारा गांव कम से कम जी 800-900 वर्ष पुराना गांव है, जो कि सांगवान खाप में आता है जी, सांगवान 40 में चरखी दादरी के उसमें। मैं सरपंच जी 2022 में दिसंबर में बना था जी।
1: जी
2: उस समय गांव में काफी विकास के कार्य बचे हुए थे, जैसे गलियां होगी जी, चौपाल होगी, पशु अस्पताल, जोड़ कुएं इत्यादि, वाटर वर्क्स, बहुत ज्यादा काम बचे हुए थे जी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करवाई गई जी ग्रांटों के लिए, उनके ऊपर कार्य किया गया। अब हमारे गांव में लगभग कोई कार्य ऐसा नहीं बचा जो बाकी बचाओ, एक दो छोटे मोटे कार्यों को छोड़कर। और गांव में जी काफी हम प्यार प्रेम से रहते हैं, 2500-3000 वोट हैं गांव में, छोटा सा गांव कह लो, बड़ा गांव हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, हमारे से बड़े बड़े गांव भी हैं, उनके लिए हम छोटे हैं जी। गांव आसपास के इलाके में बहुत बड़े बड़े गांव भी हैं, पर हम हमारे गांव में अच्छे प्रकार से खुशहाल ले रहते हैं जी।
1: विपिन जी आपने कहा कि आप 2022 में सरपंच बने, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, और आपने कहा कि जितने भी कार्य हो गए हैं, होने थे, वो आपने कर दिए। आपसे बात करते हुए जरूर कहना चाहूंगा, हमारे साथ 4 ऐसे लोग हैं जो आवाज के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें, फिर मैं विपिन जी से बात करूंगा। जी विपिन जी, आपने कहा कि जितने भी काम करने थे वो हमने काम कर दिए, तो क्या आपके हिसाब से आपके गांव में अब कोई ऐसा काम नहीं है जो अभी करना बाकी है?
2: जी देखो, काम तो रुकते ही नहीं जी, काम तो आगे आगे का तो चलता रहता है, बस वो ये मान के चलो ना बराबर काम बचे हुए हैं गांव में।
1: चलिए बहुत अच्छी बात
2: है, ऐसा आपको कार्य नहीं है जी,
1: आपको हम इसके लिए साधुवाद देते हैं। आप से प्रीतम जी भी सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि वो आपके आसपास ही रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपके गांव में खेल का मैदान है और क्या सीसीटीवी लगे हैं? क्या जो
2: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: जी बताइए, विस्तार से बताइए।
2: हाँ बिल्कुल जी, गांव में खेल का मैदान है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चे खेलते भी हैं, वहाँ पे खेलने की सुविधा भी है और सीसीटीवी कैमरे भी हैं गांव में चारों तरफ, सभी एंट्रियों के ऊपर, सभी मेन मेन जगहों के ऊपर। बिल्कुल जी सभी।
1: और नल से जल हर घर में पहुंचता है, पानी की क्या व्यवस्था है?
2: बिल्कुल जी, पानी की पहले तो बहुत खराब व्यवस्था थी
1: जी,
2: मेरे बनने के बाद सरकार द्वारा ग्रांट पर नलवाकर जी डिग्गी का कार्य पूरा कर दिया गया है, कुछ अभी चल रहा है पर गांव में पानी की कोई समस्या नहीं, डेली पानी आता है जी,
1: जी।
2: सुबह 8 बजे 9 बजे से पहले पहले पानी आ लेता है।
1: कितने आपके पास ट्यूबवेल है वहां पे गांव में, एक या एक से ज्यादा?
2: गांव में ट्यूबवेल नहीं है जी, गांव वैसे खेतों में ट्यूबवेल है पर गांव का नहर से पानी जुड़ा हुआ है जी।
1: अच्छा,
2: नहर से पानी भरते हैं।
1: वो नहर का पानी सीदा ही नलके के थ्रू आता है या उसमें पहले?
2: नहीं जी, पहले डिग्गी में पानी आता है, फिर टैंक में फिल्टर हो गए, फिर आता है जी घरों में, नलों में।
1: यानी कि पानी की समस्या नहीं है?
2: नहीं जी नहीं, पहले थी अब नहीं है
1: जी। प्रीतम जी, प्रीतम जी आपका इंटरनेट का इशू है।
0: मैं सर सरपंच साहब से मैं पूछ आता हूँ, सरपंच साहब आपने?
2: हाँ जी बोलो जी।
1: प्रीतम जी आपका इंटरनेट का इशू है, कौन सा इंटरनेट आपने लगा रखा है जिसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है? क्या आपके पास वाईफाई नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है?
0: मेरा सवाल है सरपंच, सरपंच साहब कह रहे हैं कि मैंने गांव के सारे विकास,
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रीतम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कनेक्ट करिए, अगर आपके पास नेट की कोई इशू है तो वो आप देख लीजिए प्रीतम जी। और चलिए जब तक प्रीतम जी दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रीतम जी की आवाज आती है। विपिन जी, मुझे लगता है कि आपने स्कूल और स्कूली शिक्षा और बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो स्कूल के लिए आपने कुछ काम किया होगा, उसके बारे में बता दीजिए।
2: हाँ जी, हमारा स्कूल फिलहाल में बिल्कुल बन के तैयार हो चुका था, अब से 2 साल हो लिए, बच्चे भी वहाँ पे अब अच्छे तादार से जाते हैं क्योंकि पहले टीचरों की कमी थी, अब टीचर्स वगैरह और भी लेके आए हैं, तो इस साल भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, एक साल एडमिशन ज्यादा से ज्यादा होती है
1: जी,
2: तो पिछले मुकाबले, और एक साल अब 15-15, 20-20 बच्चे ज्यादा सरकारी स्कूल में जाते हैं।
1: तो अभी जो रिजल्ट आया कुछ समय पहले, उसमें आपके स्कूल का रिजल्ट क्या रहा?
2: उसमें मेरिट में तो कोई नहीं आया जी, पर हमारा 10th तक स्कूल है
1: जी,
2: 10th तक सभी बच्चे पास हैं, पर मेरिट में कोई नहीं आया।
1: अच्छा चलिए, आपको मैं खेल के मैदान की ओर लेके चलता हूँ। आप खुद युवा है और जब आप देखते हैं अपने गांव वालों को उस खेल के मैदान में खेलते हुए, आप खुद क्या खेलते हैं?
2: या आप? मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ जी।
1: उसी मैदान में या कहीं और?
2: हाँ जी उसी मैदान में जी। नहीं उसी मैदान में जी।
1: चलिए, कोई कितने सारे आपके दोस्त हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सरपंच बने हैं तो सरपंच

0: करना है ना करना, किसी की सलाह, कोई किसी को कोई और सलाह दे, कोई पसंद आवे किसी को ना भी पसंद आवे तो वो अपनी सलाह देता है जी।
1: फिर आप वही करते हैं कि जो सभी चाहते हैं?
0: हाँ जी, वो वही करते हैं जो सभी चाहते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके।
1: जब आप ग्राम सभा करते हैं तो लास्ट आपने ग्राम सभा कब की?
0: लास्ट ग्राम सभा जी 3 महीने पहले की थी जी, दिसंबर में।
1: कितने लोग आए थे और
0: तीन चार महीने
1: कितने लोग आए थे उसमें और कितनी महिलाएं थी?
0: उसमें ऑलमोस्ट जी मान के चलो 600 से 700 आदमी थे गांव के जी, और महिलाएं थी 150-200 महिलाएं थी जी।
1: और आपके जितने पंच है गांव के उसमें महिलाएं कितनी हैं?
0: उसमें 5 महिलाएं जी, 5 जेंट्स हैं।
1: अच्छा, तो वो जब आप अपनी मीटिंग करते हैं तो क्या उन महिलाओं का जो योगदान है वो कितना है? कोई फैसला जब कोई आप लोगों को कोई डिसाइड करना होता है
0: पूरा
1: जी, उनका कितना रोल होता है उसमें?
0: पूरा रोल होता है जी, सभी पंच बुलाए जाते हैं, सभी का कोरम पूरा है। कोई ऐसा हमारे गांव में कोई ऐसा पंच नहीं है जो किसी कार्य को लेकर नहीं आता हो। एक आधी बार कोई पंच को काम हो जाता है तो ही वैसक ना, तो कोई ऐसा पंच नहीं है जो किसी का कार्य में नहीं आता हो, हर एक कार्य सहयोग से किया जाता है उनके।
1: वैसे तो आपके गांव में फिर हमें एक बार आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी गांव की रूपरेखा यहाँ हमारे दर्शकों को हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इस युवा अवस्था में गांव को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो आपका गांव देश में नंबर 1 क्यों नहीं आ रहा है, अगर आपके हिसाब से आपने गांव में सारा काम किया है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी देश में तो मेरे से बड़े बड़े गांव भी हैं, मेरे से, मैं ये नहीं कहता सारे काम मैंने ही कर रखे हैं मेरे गांव में, मेरे से और भी ज्यादा काम किए लेंगे वो तो जी। सरकार देखती है, वो उनकी टीम आती है, वो चेक भी करके जाती है, वो टीम हर एक अपने लेवल के ऊपर चेक करती है जी।
1: आप युवा है और कितना अनुभव है आपको, अगर गांव में कोई झगड़ा हो जाता है उस झगड़े को अगर सबसे पहले आप तक उस झगड़े को पहुंचाया जाता है तो आप उसका निवारण कैसे करते हैं, या वो झगड़ा फिर पुलिस स्टेशन और अदालत तक जाता है?
0: देखो जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सरपंच बनने के बाद आज तक 3.5 साल से ऊपर हो गए
1: जी,
0: कोई भी FIR थाने के अंदर आज तक जो झगड़े हो जाते हैं, एक आधा कोई फोन भी कर देता है 112 पे फोन कर देता है, वो एक अलग बात है
1: जी।
0: थाने के अंदर किसी की आज तक कोई FIR नहीं हुई है जी,
1: यानी कि उसका आप साथ मिलके उसका समाधान
0: दोनों पक्षों को बिठाकर, दोनों पक्षों को बिठाकर गांव पंचायत के बीच में फैसला होता है जी। 5 पंच परमेश्वर होते हैं, 5 पंचों को बोल लो जी और गांव के मौजूद आदमी है उनको लेकर फैसला किया जाता है जी। ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ भाई थाना में जाके वो करेंगे, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो 112 पे कॉल डायल कर सकते हैं बस, इससे ज्यादा और आगे थाने में आज तक कोई FIR नहीं है, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हो इस चीज का।
1: नहीं नहीं, हमें विश्वास है जो आप इस पटल पर जो बात रख रहे हैं ये बात सिर्फ मेरे तक नहीं पहुंचती है बल्कि हरियाणा के बहुत सारे सामुदायिक रेडियोज पर आपकी आवाज इस समय लाइव है, बहुत सारे लोग आपके गांव को आपको सुन रहे होते हैं इस समय। अगर उनमें से कोई इस समय हमें कॉल करना चाहे तो वो कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8816-904-904। और विपिन जी से अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं, विपिन जी तक पहुंच सकते हैं और आप लाइव उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। विपिन जी आप मुझे ये बताइए कि पानी का जो स्रोत है वो आपने बोला नहर है, जमीन से जो पानी जो जमीन से पानी आता है तो उसका लेवल क्या है, वाटर लेवल क्या है आपके इलाके में?
0: हमारा वाटर लेवल 10 से 12 फुट है जी, क्योंकि हमारे यहाँ पर धानों की खेती होती है, धान की खेती होती है,
1: वो क्या
0: इससे जो ऊपर चढ़ जाते हैं धान जो हम चावल खाते हैं।
1: अच्छा, धान की का, ठीक है ठीक है,
0: हाँ हाँ धान की, उसकी वजह से वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आया हुआ है गाँव का, बस 10 से 12 फुट है। अब उसके लिए भी जी हमने व्यवस्था कर दी है, नहर से लेकर गांव तक जो फील्ड की लाइन बोलते हैं वो दबवा दी है, जिससे चोहा उठा के आगे डाल दिया जाएगा।
1: ठीक है,
0: जो चोहा का पानी है
1: ठीक है।

0: तो सरपंच बनने से पहले आपकी कुछ और इच्छा थी जीवन में, कुछ बनने की या कुछ करने की? कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है और कहाँ पढ़ाई हुई है?
1: मेरी प्लस टू तक पढ़ाई हुई है जी, और मैं जो हमारे दादरी में स्कूल है, केन स्कूल हो गया, और एचडी साला आवास यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ जी। इन दो तीन स्कूलों में पढ़ाई हुई है मेरी तो, और इससे पहले सरपंच बनने से पहले कोई ऐसी वो नहीं थी। गांव में मेल जोल था जी, गांव के सरपंच का इलेक्शन आ गया, हमारे हरियाणा सरकार ने, वो बीजेपी सरकार ने ओबीसी के लिए अलग से निकाला हुआ है, जिस सीट निकाली थी उसमें ओबीसी की सीट हमारे गांव में आई थी, तो गांव ने मौका दिया जी, गांव नाम ने तो सरपंच बन गए जी।
0: आप जब हरियाणा सरकार को कोई भी रेजोल्यूशन देते हैं, आपने टीम की ओर से, जो आपके पंच है उनकी टीम की ओर से, या गांव में कोई ऐसी डिमांड आती है कि हमें ये चीज़ गांव में चाहिए, जब रेजोल्यूशन देते हैं तो सरकार से बात करके आपको कितनी आसानी होती है या कितनी मुश्किल होती है, और सरकार का आपको कितना सहयोग मिलता है?
1: बिल्कुल जी, पूरा पूरा सहयोग मिलता है। गाँव में किसी प्रकार की भी हम डिमांड लेके जाते हैं, जब मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे एमएलए हो, चाहे एमपी साहब हो, कोई भी हो जी, उनके जिस प्रकार की डिमांड लेके जाते हैं, अभी तक उन्होंने हर एक डिमांड के ऊपर कार्य किया है, हर एक डिमांड उन्होंने माननी है।
0: और जब उनके साथ बात करनी होती है तो कहाँ आप जाते हैं, उनके साथ बात कहाँ करते हैं आप?
1: हमारे एमएलए साहब हैं वो तो जी यहाँ पे दादरी मिलते हैं
0: जी,
1: हर रोज समाधान शिविर लगाते हैं
0: जी,
1: और जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने संत कबीर कुटीर में मिलते हैं जी चंडीगढ़, वहाँ पे उनसे मुलाकात होती है, वहाँ पे उनसे कार्य दिए जाते हैं।
0: यानी कि ऐसा कोई मुश्किल नहीं है सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, कोई मुश्किल आपको
1: नहीं थी? बिल्कुल आते? बिल्कुल भी, मैं एक गांव का प्रतिनिधि हूँ, मेरा नहीं, कोई गांव का कोई भी व्यक्ति जाकर कभी भी उनसे मिल सकता है
0: जी।
1: ऐसी सरकार हमने तो देखी नहीं जी आज तक
0: जी,
1: जो इतनी आसानी से बिल्कुल आपस में भाईचारे की तरह मिलते हैं जी। पहले तो वही बात थी, तीन तीन तीन चार चार दिन लगते थे किसी की सिफारिश ढूंढते थे बात करने के लिए, अब तो किसी टाइम जाओ, कभी मिलो, कभी अपनी समस्या बताओ।
0: देखिए विपिन जी, पंचायती राज जो हमारे देश में चला है, खास करके हम हरियाणा की बात करेंगे, और पंचायत जो बनी है उसके लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे फंड्स दिए गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके पंचायत का जो फंड लेवल है वो क्या है, और सबसे बड़ा काम आपने जो सरकार से लिया हो अपने गांव के लिए वो क्या है, उसको आप विस्तार से बताएं
1: जी। फंड लेवल तो अब सरकार ने, जैसे पीआरआई हो गया, एसएफसी, एफएफसी, ये दो तरह की स्कीम निकाली हुई है जी, एचआरडीएफ, इनका अलग अलग तरीके से फंड डालती है गांव की जनसंख्या के आधार के ऊपर।
0: Okay.
1: उनका अलग अलग गांव का अलग अलग फिक्स है जी, वो तो परमानेंट आते रहती हैं। और जैसे अलग कोई कार्य, बड़ा कार्य होगा, जैसे अब मेरे गांव में वाटर वर्क्स का कार्य चल रहा है जी, उसके लिए सरकार ने अलग से बजट दे रखा है, जैसे खेल स्टेडियम का बजट हो गया, पशु अस्पताल का कार्य चल रहा है उसका बजट हो गया। ये कुछ एक ऐसे कार्य है जो बड़े लेवल के सरकार के लेवल के कार्य थे, उन्होंने उस कार्य को किया था जी।
0: आपने पशुओं की बात की, आमतौर पर शहरों में पशु जो है वो तो सड़कों पर या गलियों में होते हैं और उनका कोई सिस्टम नहीं होता है। आपके गांव में क्या पोजीशन है, क्या वहां पर भी आवारा जो नंदी महाराज होते हैं या गौ माता होती है, तो क्या उस हिसाब से आपके गांव का जो दृश्य है वो क्या है?
1: देखो जी, गांव का दृश्य है, गांव में कोई ऐसा नंदी महाराज नहीं, कोई हमारी गौ माता नहीं जो ऐसे घूमती है, क्योंकि हमारे गांव में दो गौशाला हैं जी।
0: जी,
1: वो जो गौशाला संचालक हैं उनसे गांव की बात हो रही है कि भाई गांव में किसी प्रकार का कोई भी आवारा, जैसे बैल हो गया, ये छोड़ देते हैं जी, आसपास के गाँव के छोड़ देते हैं।
0: अच्छा।
1: उनको हर एक को वो अपने गौशाला में रखते हैं, उनको गाँव वाले फिर अपने अनुसार चंदा हो गया, या फिर जैसे फसल का समय आ गया तो फसल भी देते हैं, तूड़ा भी देते हैं उनकी देखभाल के लिए, वो भी करते हैं जी। जैसे गांव में कोई ब्याह शादी है, किसी का कोई प्रोग्राम है, तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज है मंदिर का और गौशाला का, उनका अलग से पैसा दिया जाता है वहां पे एक चंदे के रूप में, ये परमानेंट है कि भाई गौशाला और मंदिर में तो हमें योगदान देना ही देना है, चाहे किसी की खुशी हो ना हो, पर के ना गौशाला और मंदिर में तो पैसा दिया जाता है जी।
0: और उसी खर्चे से वो गौशाला भी चलती है, यानी कि आपने कहा कि
1: हाँ जी हाँ जी।
0: क्या दूसरे गांव से लोग अपने पशुओं को आपके गांव में छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है?
1: हाँ जी, कोई रात को छोड़ जाता है, खेत लगते हैं पास वाले गांव के, कोई भी इधर निकाल देता है, खेतों में घूमते फिरते गांव में आ जाते हैं, फिर अगले दिन हम उनको गौशाला में छुड़वा देते हैं, गौशाला वाले बड़े प्रेम तो
0: उनकी देखभाल करते हैं और उनका जो जो खाना पीना होता है वो होता है। प्रीतम जी आपका स्वागत अभिनंदन, अब आपको आवाज मेरी मिल रही है, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही थी, कुछ इंतजाम किया आपने?
2: हाँ भारत जी किया, आप आवाज आ रही है भारत जी,
0: शुक्र है भगवान का आपकी मधुर आवाज हमारे तक पहुंची। अब आप पड़ोसी हैं आपके जो आज विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, अब आप इनसे पूछिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं।
2: सरपंच साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है, मैं पुनः स्वागत करता हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि हम दादरी से लगता है पहला गांव दिक्कड़ा है भारत जी
0: जी।
2: सरपंच साहब से मेरा सवाल है कि इन्होंने प्लास्टिक के ऊपर अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए क्या काम किया, कोई बता सकता है
1: जी? हमने सरकार द्वारा अभियान चलाया गया था ठोस कचरा प्रबंधन का, जिसमें कचरा शेड का निर्माण किया गया था, उसमें चार पांच तरह का जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया कि भाई पोलोथीन एक साइड में, कोई गोबर एक साइड में, और कचरा है वो एक साइड में, उनके अलग अलग वो बना रखे हैं, उनको उस हिसाब से उनके अंदर डालते हैं जी।
2: नहीं, ये आपके गांव में डालने की जगह फिक्स है?
1: हाँ जी फिक्स है, बना रखी है जी, कचरा शेड के नाम से उसको बना रखा है जी।
2: अच्छा, आपके गांव में ऐसे कचरा उठाने के लिए घर घर टिप्पर या ट्रैक्टर या बंदोबस्त करवा रखा है आप लोगों ने?
1: हाँ जी, ई रिक्शा दे रखी है जून से सफाई कर्मचारियों से।
2: आपके गांव में जो आपने बताया 2200-2300 वोटों का गांव है, तो आपके गांव में कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं?
1: दो सफाई कर्मचारी हैं जी।
2: और आपकी पंचायत में कितने पंच हैं, आपके मंत्री?
1: 10 हैं जी, 10।
0: हाँ बता दिया उन्होंने,
2: महिला पंच
0: 5 और 5। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए प्रीतम जी आपसे भी और विपिन जी से भी, आप दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जगह जगह का। प्रीतम जी कहते हैं कि हमारे पास पानी कभी 20 दिन के बाद आता है या 25 दिन के बाद आता है, और विपिन जी कहते हैं हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, ये विरोधाभास जो है वो क्यों है, पहले विपिन जी बताएं और फिर उसके बाद।
1: ये तो जी देखो, चरखी दादरी जिले की तो मैं कह नहीं सकता, मैं मेरे गांव की बता सकता हूँ, किसी को शक है तो आके देख सकता है गांव के अंदर, किसी से पूछ सकता है। पानी के हमारे गांव में कोई कमी नहीं है जी किसी प्रकार की, सुबह 8 बजे से पहले गांव पानी पी लेता है जी।
0: जी प्रीतम जी, अब आप बताइए।
2: जी देखो, ये सरपंच साहब ने बताया इन्होंने गांव में बंदोबस्त रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि दादरी शहर से भी हमारे पास कॉल आती है, लगभग 6-7 दिन में पानी सप्लाई मिल रहा है लोगों को, और सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि इनका जो जल घर है वो निर्माणित है, अभी से बन रहा है और बनने लग रहा है, तो भी सरपंच साहब ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है, तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गांव वालों को इस गर्मी के मौसम में जब 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर है वहां पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं कि 8 बजे यहाँ दादरी शहर में जहाँ हमारा स्टूडियो है यहाँ लगभग 3 घंटे हो गए पावर नहीं, लाइट नहीं है, लेकिन ये धिक्काड़ा गाँव में रहते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास 8 बजे पानी आ जाता है, तो ये सरपंच साहब का बहुत बहुत बहुत सराहनीय कदम है कि गाँव का इतनी भलाई कर रहे हैं।
1: पानी नहीं जी हमारे गांव में, अब आपके दादरी में लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पे तो लाइट का भी पूरा प्रबंध है, 18 घंटे लाइट आती है, तार बिल्कुल नए 11,000 वाट के बिल्कुल नए तार है, ना आंधी में खतरा ना कुछ, और एक आधी में कुछ फॉल्ट हो जाता है तो एक अलग बात है, वो भी हमारे लाइन मैन इतने अच्छे हैं 15 से 20 मिनट में उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि दादरी पास में लगता है, उनका घर दादरी के पास ही है, वो 4 किलोमीटर का फर्क है जी, 4 किलोमीटर में जब ये आ जाते हैं।
0: प्रीतम जी आप जरा अपनी अपनी अपनी खास जो हमारी भाषा है तो उसमें आप कोई सवाल इनसे करिए और मैं विपिन जी भी को कहूंगा कि वो उसी भाषा में भी जवाब दे ताकि हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं वो आपकी बोली से और मैं भी रूबरू हो जाऊं और हमारे जो श्रोता है उनको भी कुछ कुछ अलग सा सुनने को मिले। प्रीतम जी
2: सरपंच साहब तो मेरा एक ही निवेदन है इनके गांव में हरियाणा रोडवेज की बसों की सुविधा कैसी है जबकि 4 किलोमीटर शहर से 4 किलोमीटर है, बच्चिया इनका स्कूल है वो 10वीं तक है और 10वीं से के बाद बच्चिया पढ़ने आती हैं, उनके लिए इन्होंने बंदोबस्त कैसा करवा रखा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें।
1: करवा रखा है जी वो अपनी भाषा में भाई साहब बोल रहे हैं अपनी में बता दियो, तड़के 8 बजे बस आ ली है और दोपहर 2 बजे
0: देखो एक चीज तो मैं मुझे बहुत खुशी है आज, हालांकि प्रीतम जी आज हमारे बाकी साथी अभी जुड़े नहीं है, मुझे एक चीज की खुशी है कि विपिन जी के हर सवाल में जो सच्चाई है वो दिखती है। आपने बस का सवाल उठाया और बस का इंतजाम विपिन जी ने पहले ही अपने गांव वालों के लिए किया। विपिन जी आप मुझे ये बताए कि अपने गांव में क्या कोई एक व्यक्ति भी विपिन जी से नाराज है?
1: देखो जी अब मुंह के ऊपर तो कोई बुराई करता नहीं जी पीछे तो करता उनका पता नहीं
0: जी।
2: विपिन जी चलो मैं एक और क्वेश्चन इसको बढ़ाता हूँ बार जी, आप ये बताइए आपने इलेक्शन लड़ा सरपंच का जब आपके विपक्ष में कितने सरपंच थे?
1: मेरे विपक्ष में भी 2 सरपंच उठे थे जी, एक जो मेरे गुरुजी हैं जो जिन्होंने मैं पढ़ा रखा हूँ गांव में गुरुजी हैं जी, आज भी वो मेरे गुरुजी है मेरे पिता समान है, और एक जी मेरा भाई है बलवान जी वो उठा था, बलवान ने तो मेरे बाद में पक्ष कर दिया था जी, उन्होंने मना कर दिया था नूले भाई मैं और आगे इलेक्शन नहीं बढ़ाऊंगा मेरी वोट भी आपको जाती है, जो मेरे गुरुजी है वो भाई किसी और किसी प्रकार से मान लो गांव वालों के वो तो गांव वालों की राय है जी किसको वोट दे किसको नहीं। जिस दिन इलेक्शन हुआ था जी शाम को रात को रिजल्ट आ गया 7:30 बजे सुबह 7 बजे उठते ही साथ मैं सीधा मेरे गुरुजी के पास गया था, उनके चरण लिए उनके घर पे चाय पी पानी पिया हुक्का पिया और पहली ये बात कही थी आज सरपंच मैं नहीं जी गुरुजी आप हो, आप मेरे बड्डे हो आप मेरे गुरु हो पिता समान हो आप मेरे गुरु रहोगे। आज उस दिन से लेकर आज तक हमारे बीच में वो डेली आते हैं मेरे पास, मैं उनके पास जाता हूँ कभी वो यहाँ से निकल जाते हैं तो वो मेरे पास आ जाते हैं, कभी मैं उनके घर चला जाता हूँ कभी आते हैं बैठ जाते हैं। हमारे मन में इलेक्शन एक दिन का था, आज तक किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं है किसी प्रकार की भी।
2: आपकी अब पीछे वाली ग्राम सभा कब हुई थी कोई तारीख?
1: दिसंबर में हुई थी सर, तारीख तो एग्जैक्ट याद है नहीं।
2: ठीक है दिसंबर में जब पंचायत हुई तो महिलाओं की भागीदारी कितनी थी?
1: महिलाओं की जी 150 के करीब महिलाएं थी जी, क्योंकि पंचायत में महिलाएं थोड़ी सी गांव में एक शर्म होती है जी ओला पल्ला की अगड़े बड़े बुद्धे आओ हैं जो आप तो अपने बेरा है जी गामा लो लो रो हो थोड़ी इज्जत करे है जी, लेडीज थोड़ी ही शर्माती है जी चबूतरे पारने के लिए।
2: वो जो 5 महिला सरपंच हैं वो तो आती होंगी या उनके?
1: हाँ महिला पंच बिल्कुल जी महिला पंच आती हैं जी, महिला पंच ही कार्य संभालती हैं वो।
0: विपिन जी आपको मैं कहना विपिन जी आपसे पूछना चाहूंगा कि समय जो है वो उसमें काफी सारा बदलाव आया है इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारी रीति रिवाज है उनका हम सम्मान हमेशा करते हैं, जहां पर पर्दा प्रथा है वो भी बहुत जरूरी है सम्मान करना वो भी बहुत जरूरी है, पर समय के हिसाब से बदल रहा है और हम ये मानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं का जो भागीदार होना वो बहुत ही जरूरी है। कोई भी हम घर के लिए फैसला करें वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, उसमें भी जो घर में महिला है या महिलाएं हैं उनका योगदान होना चाहिए, उनका भी उस फैसले में साथ होना चाहिए। ऐसे ही जब आप एक गांव की जो हुकूमत है गांव की जो आप गांव की जो क्या कहेंगे उसको गवर्नमेंट चलाते हैं उसमें भी महिलाओं का योगदान होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे उनसे बात करते हैं अगर वो शर्माती हैं और वो आपसे खुल के बात नहीं करती हैं जहां तक गांव के विकास की बात है, तो उस चीज को आप कैसे संभालते हैं?
1: देखो जी, मेरे साथ तो ऐसी समस्या आई नहीं है क्योंकि मैं उनसे सारी से छोटी उम्र का हूँ।
0: ठीक है,
1: बल्कि सारे गांव में जो पंच बने रहे उनसे सारी छोटे उम्र का मैं हूँ जी। कोई मेरी काकी लाग गए, कोई मेरी दादी लाग गए, कोई मेरी भाभी लाग गए।
0: हाथी
1: तो सरमान की बात है कौन जी, बिल्कुल खुल के बतलाते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। उनसे बताया जाता है ये कार्य हो रहा है, ये इस प्रकार से है, वो बिल्कुल उनसे समझा के बात होती है जी।
0: प्रीतम जी, आपसे कुछ
2: जी, हमारे पास
0: जी प्रीतम जी आपसे कुछ और पूछें, उससे पहले मैं आपको शाबाशी, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। गुरु हमेशा हमारे गुरु ही रहते हैं। जो आप गुरु का सम्मान करते हैं उसका जो नूर है, उसकी जो खुशी है, वो आपके चेहरे से झलकती है। सबसे बड़ी बात है, आपने सही बोला कि इलेक्शन एक दिन का है, जिंदगी सारी हम सबको साथ बितानी है। और अगर वो गुरु है, अगर वो मार्गदर्शक है, आपने जो सबसे अच्छा काम किया है, आप गए उनके पास अगले दिन और या उसी दिन और आपने उनके चरण छुए, आपने उनका आशीर्वाद लिया, तो मुझे खुशी है कि आप इस सोच के साथ आगे बढ़े हैं। और मुझे ये भी आशा है कि आपका गांव भी ऐसे ही बढ़ेगा। प्रीतम जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझे आप ये बताइए कि आपने अपने गांव के कितने युवाओं को प्रेरित किया है गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए?
1: लगभग मेरे गांव में जी 40 से 45 बच्चे ऐसे हैं जो अरवन जैसे हमारे पेड़ लगाने जी, अब चौमासा का टाइम आ गया तो पेड़ लगाएंगे। गांव में कम से कम 3 साल के अंदर 1000 से 1500 पेड़ लगा दिए हैं गांव वाले, गांव के जो युवा बच्चे हैं उन्होंने सबने मिलकर। इस मुहिम को हम और भी आगे बढ़ाते हैं जी, कहना भाई सरकार से भी हम कुछ योग ग्रांट लेते हैं तो वो भी हासिल होती है, ऐसी बात नहीं है। जो उनको किसी प्रकार का योगदान हो, गाँव का भी कोई और भी, तो उनको हर एक प्रकार से हम सुविधा देते हैं। हमारे एक बुजुर्ग भी है जो ताऊ दलीप नाम से है, वो इतने मेहनती है, वो खाली किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं करते, खाली पेड़ लगाते हैं भाई कुओं पर झोड़ के ऊपर, उनकी देखभाल करते हैं, सुबह जाते हैं शाम जगह जाते हैं, उन्हें पानी डालते हैं और खुदी करना, कुछ उनको कोई वो नहीं है जी, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, फ्री में वो अपने वो ध्यान रखते हैं उन पेड़ों का, वो ये मान लो। और उनको देखकर भी बच्चे प्रेरित होते हैं कि भाई हम और भी पेड़ लगाए, भाई बुजुर्ग आदमी इतने पेड़ लगा रहे है हम भी लगावा
0: जी जी। ये आपने हमारे पास एक कॉल आ रहा है, हम कॉल देखते हैं पहले कॉल। हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
3: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
3: सर विजय सिंह लखेर बोल रहा हूँ, वीर भूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से जी।
0: जी जी बताइए क्या बताना चाहते हैं
3: सर। सबसे पहले तो आपको और सर सरपंच साहब को विशेष नमस्कार जी, इनकी बातों से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला जी।
0: जी बहुत।
3: और सर मैं तो सरपंच दो ही क्वेश्चन करना चाहूंगा जी। पहला क्वेश्चन ये सर, सरपंच साहब मेरा आपसे निवेदन है कि आपके स्कूलों में शिक्षा के स्तर के लिए कितना परसेंटेज है जी, जैसे मान लीजिए 50-60
0: जी। विपिन जी
1: शिक्षा का परसेंटेज फिलहाल में 50 से 60% है, जो हम पहले सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा करते बच्चों को, सोचा करते भाई सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं है, पर वो सुविधा के अनुसार अब माँ बाप सरकारी स्कूलों में बच्चों को वापिस एडमिशन करवाने लग गए, जिससे अब टीचर भी उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं और 50 से 60% रिजल्ट है स्कूल का। अभी देखो मेरिट तो आई नहीं है जी स्कूल के अंदर, पर 50 से 60% रिजल्ट है बच्चों का
3: जी। और एक आदमी युवा सरपंच होते हुए सर, हम छोटे छोटे गाँव को नशा मुक्ति से विशेष योगदान दे रहे हैं, आपकी क्या रुचि है, क्या अनुभव है जी?
0: जी
1: बिल्कुल जी, नशा हमारे गांव में अभी तक किसी प्रकार का, जैसे देखो जी शराब का ठेका तो है, उसको सरकार भी अनुमति देती है और सरकारी ठेका है, इससे ज्यादा हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं है जी।
3: नहीं सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि आज के युवा है ना, छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल की उम्र के होते हैं, एक चाचाताओं के जो हमें औका छोड़ देते हैं उसमें जो लगे रहते हैं, उस विशेष उसमें बात कर रहा था जी। आप इसमें
1: बिल्कुल आज भी वही भाई साहब, बिल्कुल आज भी वही बात है। वो चाचा था वहां हजे धोखा ही निकेल छोड़ दी ही ना, उनके आगे पीते ना कुछ और। जैसे बात ले लो कोई किसी प्रकार से युवा बच्चे है, एक आदत पीवे भी है जी, पर वह चाचा ताऊ कोई भी दिख जाए तो उनके सामने वह ऐसी हरकत नहीं करते ना, वो काफी पीते ना कुछ और दी।
3: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बार सपोरी जी
0: जी
3: सर जी, और आज तो मिठाइयों का प्रोग्राम है जी।
0: कहाँ पर?
3: प्रीतम जी के यहाँ जी, आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है जी, हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जी उनको।
0: जी विजय सिंह लखेरा जी, आप हमेशा हमारे शोज के साथ जुड़े रहते हैं, आज भी आपने राम राम हरियाणा हमारे कमेंट में लिखा है। आपकी आवाज तो बहुत ही बुलंद है और बहुत ही अच्छी है, हमें तो बहुत पसंद आती है क्योंकि हम रेडियो का काम करते हैं, हमें शक्लों का ध्यान नहीं होता है पर हमें तो आवाजों का ध्यान होता है। आपकी बहुत बुलंद आवाज है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और आप ऐसे ही कॉल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए हमारे मेहमान जी।
3: जी ओके जी, नमस्ते जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सरपंच जी, हमारे पास कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं उनको भी पढ़ना चाहूंगा। सौरभ अरोरा राम राम हरियाणा लिखते हैं, सर्जन सिंह हमें हमेशा हमारे शो के साथ जुड़े रहते हैं राम राम हरियाणा कहते हैं, करमबीर सिंह राम राम हरियाणा, साहिल शर्मा राम राम हरियाणा कहते हैं, रणदीप सिंह ने विपिन जी के लिए एक सवाल लिखा है, मैं वो सवाल पढ़ना चाहूंगा। रणदीप सिंह लिखते हैं, एक सवाल सरपंच विपिन जी, घीकार से आपके गांव का नाम लिखा है, क्या आपके गांव के खेत यानी कृषि भूमि की बात कर रहे हैं वो, मैं पानी के निकासी की समस्या है, चाहे वो बरसाती पानी हो या किसी अन्य वजह से, और आपके यहाँ पानी का लेवल क्या है जो मैंने आपसे पूछा था। मैं इससे पहले आप उत्तर दें, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कल जो हमारे अम्बाला खंड अकबरपुर के एक गांव से हमारे सरपंच जुड़े थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि खेतों में जब पानी आता है तो पानी की निकासी नहीं होती है, जहां पे किसान की फसल बर्बाद होती है, और हम सरकार से चाहते हैं कि कुछ ऐसी नीति बनाए ताकि खेतों से पानी निकलने की निकासी का प्रबंध करना हो। तो यही सवाल रणदीप सिंह ने आपसे पूछा है, और आप इसका उत्तर दीजिए।
1: बिल्कुल जी, पहले तो सभी जिन्होंने आपका कमेंट कर रखा है उनको राम राम, और जी ये भाई साहब को बताना चाहूंगा, हमारे गांव में खेतों के पानी के निकासी के लिए फिल्ट की लाइन दब चुकी है जी।
0: अच्छा,
1: जो इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर जाके जुड़ती है, किसी प्रकार से हमारे गांव में जल भराव की समस्या नहीं है, गांव में दो दो जोड़ हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है कि भाई पानी भरता हो हमारे गांव में बरसात के समय।
0: नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे बाढ़ आई या पानी ज्यादा बारिश ज्यादा हुई, जहां फसलें हैं खेतों में, अगर उनमें पानी भर जाता है कि उसकी निकासी की आप बात करते हैं, वहां पे निकासी है
1: पानी भी, उनकी निकासी के लिए भी फिल्ट की लाइन दबी हुई है जी, गांव में चारों तरफ फिल्ट की लाइन दबी हुई है, वहां से अपने खेतों का पानी निकाल सकती हैं गांव खेतों वाले।
0: बहुत अच्छी बात है। और ये क्या सरकारी योजना के अंतर्गत ये हुआ है?
1: हाँ जी सर, सरकारी योजना के अंतर्गत हुआ है जी, गांव के चारों तरफ जितने खेत लगते हैं वहां पे फिल्ट की लाइन दबी हुई है, जो पानी को उठाकर नहर में डालती है, जो इंदिरा कनाल है उसके अंदर डालती है जी।
0: बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारे पास इस समय अकबरपुर अम्बाला के सरपंच राम निवास ये बात सुन रहे हैं, जो कल उन्होंने सवाल पूछा था, जो चिंता उन्होंने जताई थी, जो सरकार के लिए उन्होंने अपना अनुरोध किया था, हमारे साथ विपिन जी जो इस समय जुड़े हैं चरखी दादरी से, और वो कहते हैं कि उनके गांव में पानी की निकासी की जो सुविधा है उन्होंने सरकार से वो लेके वो आप उन्होंने कराई है। बहुत अच्छी बात है, आपने सकारात्मक जवाब दिया। इससे बीच में मिठाइयों की बात हुई थी तो प्रीतम जी ने कुछ ऐसी मुस्कान दी जिस मुस्कान से मुझे लगा कि हमें भी प्रीतम जी को आज बधाई देनी चाहिए थी। प्रीतम जी, आपको एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कमेंट में रणदीप सिंह लिखते हैं हैप्पी एनिवर्सरी प्रीतम जी, अब ये आप हैं, इसके बगैर और कोई नहीं हो सकता, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, आपको बहुत बहुत बधाई।
2: धन्यवाद भारती, और सभी श्रोता सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या पूछना चाहते हैं विपिन जी से?
2: मैं विपिन जी से एक सवाल है मेरा। विपिन जी कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पानी का भरा, जब खेतों में पानी भर जाने होते, विपिन जी एक ये घटना है, सच्ची घटना होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी यही इलाके से हूँ, मेरा भी गांव दादरी के पास ही है। आपके गांव में जो धान बोने का एक गवर्नमेंट कह रही है कि धान ना बो, आपने गांव में धान न बोने के लिए किसानों के लिए कभी जागरूकता के लिए कोई कैंप या गांव को समझा के कि धान न बोए, इससे खेती खराब, जमीन खराब होती है, इसे इसके बारे में कभी आपने गांव में सभा करके या गांव वालों को?
1: इस सवाल का एक छोटा सा जवाब दूंगा। आप चावल खाते हो?
2: खाते हैं जी, चावल खाते हैं।
1: आप चावल खाते हो, धान नहीं उगेगा, चावल आएगा कहाँ से? सरकार मान ली आपकी भाई जमीन खराब होती है, तो फिर वो चावल को कहाँ से लेके आए हुए, ये तो बताओ मेरे को। हाँ भाई चलो, धान की धान से खेती खराब होती है, इतना पागल तो किसान भी नहीं है जी अपने खेत को खराब करके किसी फसल को उगाएगा।
0: इस
1: ये तो आप भी समझते हो जी।
0: इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा, इससे पहले हमारे पास डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान लिख रहे हैं कि बस 5 मिनट में मैं जुड़ने वाला हूं, वो भी आ रहे हैं। विपिन जी, आपको मैं बताऊं कि मैं अंबाला में पिछले 36 वर्षों से हूं, मूलतः मैं कश्मीर से हूं, और अगर हमें रोटी और चावल खाने में मौका मिले तो हम तो चावल ही पसंद करते हैं। तो वहां भी जीरी हम उगाते रहे हैं, तो कभी भी जमीन खराब नहीं होती है। ये बात कहां से आई कि अगर हम धान उगाएंगे तो जमीन खराब होगी? मैं तो इसके साथ सहमति नहीं देता हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये कि नोशन है या क्या बात होगी। और हमारे साथ मुझे लग रहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपको मिस कर रहे थे, और बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर, और हमारे साथ आज विपिन जी जुड़े हैं, और अद्भुत गांव इनका है जो इन्होंने अभी तक जो भी हमने सवाल किया, क्योंकि हम दो ही थे, हमारे पास जितने भी सवाल थे वो हमने दाग दिए, और उन सारे सवालों का पूरा खुशी से और कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास उत्तर आया। तो अगर आपने सुना हो तो कृपया अब आप आगे संभालें। विपिन जी से आप कुछ पूछना चाहेंगे तो स्वागत है आपका।
4: भारत जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, प्रीतम जी को प्रणाम करता हूँ, विपिन जी को भी राम राम, इनके गांव को राम राम, इनके
1: माध्यम से राम राम।
4: मैं एक अलग कार्यक्रम में था, इसलिए उस दौरान आपके अब तक के कार्यक्रम में क्या चर्चा हुई वो तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन बाद में मुझे अवसर लगेगा, मैं ये कार्यक्रम फेसबुक पर दोबारा से देखूंगा, क्या क्या विपिन जी ने कौन कौन सी मिसाइलें छोड़ी, कौन कौन सी तोप के गोले दागे, वो मुझे पता चल जाएगा। मुझे तो एक दो सवाल इनसे वही पूछने हैं जो मैं आमतौर पर सबसे पूछता हूँ। अभी हाल गांव के तालाबों की स्थिति क्या है, विपिन भाई जरा बताइए।
1: मेरे गांव में जी 2 तालाब है फिलहाल में, दोनों तालाब सरकार के द्वारा अमृत सरोवर योजना में लिए गए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे तालाब हैं। वहां पे गांव में अलग से एक तालाब में गंदा पानी आता है गांव का, और एक तालाब बिल्कुल नहर के पानी से भरा गया है जी, जो बारिश का नहर का पानी है उसमें पशु भी जाते हैं।
4: इन इन, इन तालाबों पर लोग उस पे जो पटरी बनी होगी उस पे लोग सैर वैर करते हैं?
1: बिल्कुल सैर करते हैं जी, बैठने के लिए कुर्सी भी है वहां पे, बैठते भी हैं, देर रात तक घूमते हैं, खाना खा के शाम को घूमने भी जाते हैं।
4: अब सवाल ये है, बहुत सारे अमृत सरोवर या दूसरे सरोवर हमने बहुत अच्छे बना दिए गांव में, आपके गांव में भी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ 2 तालाब बन गए हैं उस श्रेणी के। अब बेहतर तालाब बन गया, लेकिन आम तौर पर बहुत सारे गांव में संकट ये है कि वो तालाबों की देखरेख करने की वहां की पंचायत ने या ग्राम समुदाय ने बढ़िया व्यवस्था नहीं की। आपने ऐसा कुछ किया है क्या जिससे ये तालाब, इनकी गरिमा, इनकी स्वच्छता वो बनी नहीं रहे खाली बल्कि बढ़े आने वाले दिनों में?
1: ऐसा कुछ हमारे गांव में
4: इनकी सफाई का इंतजाम है?
1: खुद खुद गांव वाले खुद इस बात का ध्यान रखते हैं जी। आज से 10 से 15 साल पहले गांव में इतना जोड़ खराब हो गया था, जहां ना तो पशु जाते थे ना कुछ और, अब गांव के लगभग व्यक्ति पशुओं को लेकर जाते हैं जोड़ के अंदर, सुबह भी शाम को भी, वो खुद उस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई कोई भाई बच्चा किसी प्रकार से किसी चीज को हानि ना पहुंचाए। मैं एक अकेला सरपंच जी वहां पे 24 घंटे नहीं रह सकता, ये पूरे गांव की जिम्मेवारी है, पूरा गांव इसमें सहयोग करता है जी। वहां पे जैसा तालाब शुरू में बना था आज भी वैसे का वैसा, बल्कि उससे कुछ ज्यादा वो हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों की देखभाल भी करते हैं, खुद जाली भी लगाते हैं, बाड़ भी लगाते हैं, पानी भी देते हैं, सारा काम करते हैं जी।
4: ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही। और जहां पर ग्राम समुदाय स्वयं जागृत हो जाता है ना कि हम गलत होन को नहीं दिया, हम संभाड़ांगे, हम गंदगी फैलान नहीं देंगे, माने जब इस भाव से गांव का समुदाय स्वयं काम करने लगता है तो फिर देखिए स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें बेहतरीन हो जाती हैं। पीने के पानी की क्या स्थिति है अभी गर्मी के मौसम में?
1: पीने का पानी दिल की तो
4: मैं फिर मेरे प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
4: स्थिति क्या है, क्या ऐसा कोई घर है जिसके
1: ऐसा गाँव में कोई घर नहीं है जिसमें नलका नहीं हो, जिसमें पानी नहीं पहुंचता हो। सुबह 8 बजे से पहले जो आप पानी पी रहे हो ऐसा ही पानी गांव में पहुंच जाता है जी।
0: विनंद सर एक बात कहना चाहूंगा, कल हमारे पास अकबरपुर अंबाला से जो सरपंच राम निवास जुड़े थे उन्होंने एक मुद्दा बताया कि जो सरकार तक वो पहुंचाना चाहते थे वो ये था कि जो गाँव में जो हमारे किसान भाई है उनकी जब फसलें होती है और अगर किसी कारणवश पानी ज्यादा आता है, चाहे वो बाढ़ से आए चाहे और किसी कारण से आए, तो उनकी फसलें तबाह होती है, वो सरकार से चाहते थे कि पानी की निकासी का इंतजाम हो। और उसके बाद गुड़गांव से हमारे पास यमुनानगर के एक ग्रामवासी का कॉल आया था, उन्होंने भी उसी पॉइंट को बताया था कि आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों का इसका इंतजाम करना चाहिए कि उनके खेतों में पानी की निकासी हो। वही सवाल जब हमने आज विपिन जी से किया, उन्होंने किसी सरकारी योजना के अंतर्गत अपने गांव में इसका इंतजाम किया है, तो आप प्लीज ये इनसे पूछिए क्या इंतजाम उन्होंने किया, किस तरीके से इंतजाम किया है ताकि हम लोगों तक पहुंचाएं, अलग अलग गांव तक पहुंचाएं, वो भी सरकार के पास जाएं उस योजना को लेके, ताकि उनके गांव के जो किसान है उनकी जो खेती बाड़ी है वो भी बच जाए। प्लीज सर।
4: देखिए बरसाती पानी को लेकर हर गांव की हर क्षेत्र की जिलावार स्थितियां अलग अलग हैं। आप जैसे अंबाला में हैं तो आपके आपके यहां से जो नदी बहती है अंबाला को हर बार उसने टांगरी ने खास तौर पे हल्का फुल्का डुबोना होता है अंबाला के अगल बगल के क्षेत्र में। घग्गर का पानी भी आपके यहाँ आ जाता है, पिछली बार तो काफी संकट हुआ था। तो वो गांव जिनके यहाँ सालाना या साल दो साल में बाढ़ आती ही है उनके यहाँ इंतजाम और तरह के होंगे। गांव यहाँ ऐसे भी होंगे सिरसा के भी हो सकते हैं, सिरसा में नहीं होंगे तो हमारे यहाँ भिवानी में दादरी में प्रीतम जी के क्षेत्र में ऐसे भी गांव होंगे जो ये न्यू बाढ़ देखे हैं कि किसी बाढ़ आ जाए, मतलब इन्होंने बाढ़ देखी नहीं होगी, कभी देखी होगी तो
1: 90 बिल्कुल ऐसा ही काम है।
4: नाम बाढ़ जड़ा होगा पर बाढ़ नहीं आती उड़े बाढ़ में भी बाढ़ नहीं आती, सूखा पड़ा पाओगा। तो मेरा ही कहना है कि अलग अलग स्थानों की परिस्थिति पानी को लेकर के बरसाती पानी को लेकर अलग अलग है। अंबाला में काफी कुछ व्यवस्थाएं विज साहब के दखल से बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी अंबाला में भी अभी जैसे अभी पिछले मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ में थे और नारायणगढ़ में भी ऐसी कुछ नाले हैं पहाड़ जिसे कहते हैं ना बरसाती छोटी छोटी धाराएं हैं ऊपर से आती हैं, उनमें उनका पानी बहुत बार जो मान लीजिए नारायणगढ़ है वहां भी अंदर भी आ जाता होगा, उसकी निकासी में समस्या होती होगी। तो स्थानीय आधार पर स्थानीय स्तर पर चीजों को ठीक करना है। अब विपिन जी ने अपने यहाँ क्या किया जरा विपिन जी दोबारा बता दीजिए ताकि बहुत सारे और लोगों के लिए भी वो काम आ जाए। आपके यहाँ क्या स्थिति थी? एक बरसाती पानी की निकासी बिल्कुल अलग प्रश्न है, बरसाती पानी की निकासी अलग प्रश्न है और गांव के सामान्य जो गंदा पानी है घरों का उसकी निकासी थोड़ा सा डिफरेंट
1: इशू जी। खेतों के पानी के लिए भी अलग से फील्ड की लाइन दबा दी गई है, वहां पे हरेक दूसरे तीसरे खेत के ऊपर ओदी बना दी गई है जी, उन लाइनों में उन ओदियों में पानी डाल देते हैं किसान भाई आगे चले जाते हैं आगे वहां पे नहर के हमारे पास में लगती है 1.5 से 2 किलोमीटर दूर इंदिरा कैनाल जी, उसके अंदर उसका कनेक्शन किया गया है, उसके अंदर वो उठा के वहां से मोटर पानी डाल देती है। उन ओदियों में किसान पानी हाँ जी लिफ्ट करना पड़ता है,
4: ओदियों में भी लिफ्ट करके डालता है।
1: हाँ जी ओदियों में मोटर लगा देते हैं, उस टाइम इरीगेशन डिपार्टमेंट मोटर लगा देता है वहां, उस एरिया से कम 35-40 किलो का एक मोटर लग जाती है, वहां से उस पानी को उठाकर उस नदियों में डाल देते हैं। उन नदियों से आगे
4: किस योजना में काम हुआ है, कोई नाम है इस योजना
1: की? फील्ड की लाइन बोलते हैं जिसको, फील्ड की लाइन गन पानी की जो फील्ड, हाँ जी जो चोवा को भी
4: फील्ड की लाइन होगी,
1: हाँ जी, जो चौ को भी जो ऊपर चौ आ जाता है जहां जहां उसको भी खींच कर लाती है।
4: चलिए इसका विवरण मैं संबंधित अधिकारियों से लेके उसको दोबारा से भी साझा करेंगे। और
1: इरिगेशन डिपार्टमेंट की योजना है जी,
4: हाँ अंबाला भारत जी, अंबाला की स्थिति अलग है, करनाल की अलग है, और इनके गांव की स्थिति अलग मिलेगी। प्रीतम जी के गांव का मामला किम में और पाओगा। भारत जी क्या कह रहे हैं?
0: सर मैं आज अगर आप इजाजत देते हैं आपका क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा विपिन जी से, क्योंकि विपिन जी से जितने भी सवाल हमने पूछे उन सवालों का जवाब सही सही आया। अब आपका एक सवाल है जो शायद विपिन जी दोबारा हमें अच्छे से जवाब दे पाए, तो वो मैं पूछना चाहूंगा। विपिन जी, PIA है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो क्या आपने इसका गांव में इसका पटल जो है वो लगा रखा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए।
1: बिल्कुल जी, गांव में हर एक चीज की जो पंचायत के अलग एक वेबसाइट होती है जी,
0: जी
1: ई ग्राम स्वराज योजना
0: जी,
1: उसके ऊपर हर एक चीज बकायदा दी जाती है। इतनी ग्रांट गांव या इतनी ग्रांट का यूज हो गया, इस कार्य में यूज हुआ, हर एक चीज की उसमें गांव की जितनी भी पंचायत की कोई आमदनी होती है, खर्चा होता है, उसमें एंटर होता है, उसमें गांव का कोई भी व्यक्ति देख सकता है
0: जी। वीरेंद्र सर
4: चलिए बहुत बढ़िया, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का आप उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पाई का चार्ट भी आपने कहीं ना कहीं लगा रखा है, आपका अभिनंदन। मुझे लगता है पहले सरपंच हैं जो इस मामले में सही दिशा में सही जगह पे खड़े हुए हमें मिले हैं आज के इस कार्यक्रम के लंबे सिलसिले में। ये प्रीतम जी, एनिवर्सरी किस चीज की है भाई, बता दो।
2: सर एनिवर्सरी वो कहते हैं, आज मेरे को वैसे सर शादी को साल गिरे को 13 साल हो गए सर, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में हो गए सर, 13 साल हो गए सर।
0: बस फिर तो
4: आप क्या, क्या अब हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा?
0: अनुभव बताइए सर, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट है, अनुभव बताइए, उसके बाद मैं कमेंट लेता हूँ। प्रीतम जी अनुभव बताइए, इतने सालों का क्या है?
4: आपके पास 1.5 मिनट का समय है प्रीतम सिंह जी, ये जो पंगा आपने 13 साल पहले लिया था, ये जो लड्डू आपने खाए थे, ये कैसे रहे? और ये तो हम ये मान के सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी श्रीमती जी कार्यक्रम देख सुन नहीं रही होंगी, और आप जो कहोगे सही कहोगे।
2: तब ये लड्डू खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, वही बात है सर। ये जो छोटी मोटी तकरार के साथ ऐसा जीवन चलता है, ऐसा चलता रहे तो मैं भगवान से कहता हूँ मुझे तो सौर है इस धरती पे। लेकिन मैं सर ये बात करेंगे अगले समय, कहीं बैठ के बात करेंगे, नीलो खड़ी आएंगे तब। मेरा एक विपिन जी से एक सवाल था, मेरा विपिन जी एक आपके गांव से विजेंद्र जी का एक कॉल आई थी हमारे पास 12 तारीख को।
1: हाँ जी,
2: उनका एक सवाल था कि हमारे गांव में किसान फसल के अवशेष जला देते हैं, जो गेहूं के फाड़े थे वो थे, हमारी तरफ कोई नहीं देखता, तो इसके बारे में आप एक बार बता दीजिए। और दूसरा था, क्या आपके ग्राम सचिवालय में है गांव में, अगर है तो सीएससी सेंटर पे क्या आपने रेट लिस्ट लगा रखी है?
1: नहीं जी, का हमारे गांव में ग्राम सचिवालय नहीं है जी। पहले तो
2: सीएससी होगा आपके गांव में कोई
1: भी? नहीं, सीएससी भी नहीं है जी हमारे गांव में,
4: पूरे गांव में सीएससी नहीं है, ये तो नहीं हो सकता।
1: हमारे क्यों नहीं है जी, ये आपको कारण बताता हूँ। हमारा गांव चरखी दादरी से 4 किलोमीटर दूर है मात्र,
4: शहर चले जाते हैं सब लोग,
1: शहर चले जाते हैं जी, गांव में वो चीज चलती नहीं, इस कारण, क्योंकि उस काम को करवाने के साथ और काम भी करते हैं गांव वाले।
4: चलिए ग्राम सचिवालय आपका जल्दी बने, इसके लिए प्रयास करिए, प्रस्ताव रुस्तु पारित करके
1: बिल्कुल ये इतना काम किया सरकार यह भी देगी जी।
4: हाँ, सरकार का आग्रह यही है कि गांव की सरकार ग्राम सचिवालय से चले, गांव के सरपंच, गांव की पंचायत, गांव के सचिव और अन्य महकमों के भी जो लोग हैं, चाहे पटवारी हो, बिजली वाले हो, जो लोग गांव में तैनात होते हैं वो हमारे ग्राम सचिवालय में बैठे दिखें, वहां से काम करें, और गांव के लोगों को कहीं भी कोई अपना काम कराना है तो उनको इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, एक ही ठिकाना हो, एक ही गांव के प्रधानमंत्री का दफ्तर उनको नजर आए और वहां वो जाके अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। सरकार की इच्छा तो यही है। मुझे लगता है 1000 से ज्यादा नए ग्राम सचिवालय बन भी गए होंगे अब तक हरियाणा में, हम सबके सब गांव में बनाना चाहते हैं, कुछ पुराने हैं उनको इम्प्रूव करके, लेकिन आप प्रयास करिए, हमारी कहीं आपको लगे कि आवश्यकता है कहीं के किसी तरह की कवरिंग फायर की हाथ, जिसे अंग्रेजी वाले क्या करते हैं हैंड होल्डिंग, हाथ थामने की, तो भाई हम आपके साथ खड़े हैं। 4:59 भारत जी हो गए हैं
0: जी।
4: मुझे लगता है आज के कार्यक्रम को आप सही समय पर, विपिन कुमार गर्ग जी हमारे पत्रकार मित्र हैं पंचकुला से, उनकी राम राम स्वीकार करते हुए, इंद्राज सिंह की शुभकामनाएं जो प्रीतम जी के लिए आ गई हैं उनको स्वीकार करते हुए, और ये विकास बंसल का कमेंट नहीं पढ़ा होगा आपने अभी तक
0: सर, लगता है। मुझे ये कमेंट समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज आप
4: पढ़ तो मैं दूंगा सर। एक मामले सरपंच साहब की तरह मैं भी अपनी अपीयरेंस को रखता था, तो सभी हमेशा पूछ लेते थे थके हुए लग रहे हो, तो मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया, अच्छा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली होगी विकास बंसल ने कभी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया होगा भारत जी की तरह रहा करो, प्रीतम जी की तरह चमकते दमकते। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपिन जी कहीं थके होंगे। आज के कार्यक्रम को दोस्तों यहीं पर विराम देते हैं, राम राम हरियाणा कहते हुए। क्यों भारत जी,
0: जी बस मैं विपिन जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि सभी जितने भी लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, आप अपने मुखमंडल से जितने भी सरपंच जितने गांव के लोग हमें सुन रहे हैं उनको आप आखिरी स्पष्ट संदेश क्या देना चाहते हैं, उसके साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
5: बस जी मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, आप पसरी में गांव राम में मिलके जुलके रहो, प्यार प्रेम से रहो, गांव एक होता है जी, गांव में कोई जाति नहीं होती, कोई पाति नहीं होती, और एक गांव वाले को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और सबसे बातें करता रहना चाहिए, सबसे मिलजुल कर ही रहना चाहिए, बस यही चाहता हूँ जी, आपस में प्यार प्रेम से रहो, आप सबकी मदद करो।
4: हरियाणा में गांव को कहते हैं गांव राम, और हमारी भी सारे हरियाणा वालों को
5: राम राम।
4: राम राम,
5: ठीक है जी,
0: राम राम।
6: निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे, मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शमी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शमी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शमी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शमी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शमी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती। लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी

0: हद का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: है। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: थी ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: थी दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश करेंगे RJ किरणी।

FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता सुन रहे हैं आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं किरणी, आपके साथ सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ प्रोग्राम रेट्रो हिट्स में। आज के प्रोग्राम का टाइटल है चांद, और आज आपको मैं सुनाती हूं चांद पर आधारित गाने जो आज भी उतने ही खूबसूरत और हर दिल अजीज हैं। चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद को कौन याद

0: चांदनी रात में चांद तेरे चेहरे से जलवा दिखाता है, सितारों के जहां सारा उसकी रोशनी में चमकता है।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: दिन में चैन नहीं ना होश है, रात में खो गया है चांद भी, देखो बादल के आगोश में।

कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पे शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन ना था वफा पे, तभी चांद पे तारों का पहरा है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशन रहा भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: तुम रहती हो।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

गीतों पे मबनी प्रोग्राम पेश है। धीरे धीरे अब ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम इन बादलों में कहीं खो सा गया है। मैं हूं रमेश मराठा, नमस्ते।

तेरे इंतजार की चाहत में लुट गई, खामोश हो गए, फना हो गए, भीगती बारिशों में चिल चिलाती धूप, सुबह शाम रात की चुप्पी में मैंने तेरे लौटने तक इंतजार किया।

कहीं वो तो नहीं? इन हवाओं के झोंकों में तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरी मायूसी टूट जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। शायद तुम आओगे, चलोगे मेरे साथ सफेद बर्फ की चादर पे पिछले मौसम की तरह।

खुशी को मुअत्तर करती है। बस तुम्हारी आवाज सुनते हैं और सुकून पाते हैं, मेरे हर दर्द की दवा बन जाते हैं आप। जाने अनजाने जब आईना देखते हैं तो तुम नजर आते हो, तुम ही नजर आते हो। जानता हूं ये समंदर है, इसमें तैरा नहीं जा सकेगा, पर न जाने इसको नापने की ख्वाहिश उभरती क्यों है। जानता हूं तुम्हें छूना एक ख्वाब की तरह है, पर फिर भी क्यों तुम्हें अपनी नींदों में शामिल करता हूं शब रोज़।

यूं ही तन्हा तन्हा। साथी थे पर छूट गए, अब यह रह गुजर भी है हमारी ही तरह तन्हा तन्हा। बस हम तलाशते हैं वो साथी जो कभी हमारे अपने थे, सिर्फ

काश तुम रोक लेती हमें चंद पलों के लिए, मुझे अपनी पनाहों में थोड़ी सी जगह देती, मुझे सहलाती, मुझसे प्यार करती, मुझे अपनी बाहों में लेती, मेरा हाथ थामती। मखमली मौसमों के संग चलते, मखमली मौसमों के संग चलते, मेरे अरमानों को गुलजार करती, मुझे अपना समझती, मगर ये हो न सका, ये हो न सका। काश तुम रोक लेते हमें चंद पलों के।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे अब आपसे इजाजत।

जी हाँ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं और बात करते हैं जो आपसे रखती हो सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको कुछ खास जानकारी देंगे, और आज हम अपने एक अजीज दोस्त को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी देंगे। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:40। मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। समय की सुइयां गवाही दे रही है कि अब हमारी और आपकी इस खूबसूरत मुलाकात को यहीं थामने का वक्त आ गया है। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता आज का हमारा और आपका सफर यहीं समाप्त होता है। दिन भर सुरों की जो महफिल हमने सजाई, उम्मीद है कि उसने आपके दिलों को सुकून पहुंचाया होगा। जाने से पहले रंगमंच की बात करते हैं और फिर एक रंगमंच के कलाकार की बात करते हैं। रंगमंच जीवन का आईना है। दोस्तों, आज चलते चलते दिल की एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे रंगमंच यानी थिएटर की। रंगमंच हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है? असल में रंगमंच महज एक कला नहीं, ये जीवन को जीने और उससे समझने का सबसे बेहतरीन नजरिया है। जब हम रंगमंच को दिल से अपनाते हैं तो हमारे जीवन में एक गहरा और सकारात्मक बदलाव आता है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, भावनाओं की समझ। यह हमें दूसरों के सुख दुख और उनके जज्बातों को शिद्दत से महसूस करना सिखाता है। दूसरा, व्यक्तित्व का निखार। रंगमंच हमारे भीतर के डर को दूर कर आत्मविश्वास और सहजता से जीना सिखाता है। तीसरा, समाज का आईना। एक कलाकार जब मंच पर उतरता है तो वो समाज की कड़वी सच्चाइयों और खूबसूरत रिश्तों को जीवंत कर देता है। सच कहें तो जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब इसके किरदार हैं। आप सभी जानते हैं कि अंबाला का व्यस्त थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला पिछले दशक से ज्यादा आपके सामने प्रस्तुतियां देता आ रहा है, और यही व्यस्त थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी भारत सरकार के लाइसेंस के बाद यह सामुदायिक रेडियो आपकी सेवा में कार्य करता है। पिछले एक दशक से ज्यादा में हमने 17 से ज्यादा नाटक और नुक्कड़ नाटक किए हैं, जिसमें 175 कलाकारों को मंच प्रदान किया, जिसमें इस समय कुछ हमारे शिष्य मुंबई में अपने करियर को बना रहे हैं। तो यह था रंगमंच, और आइए अब करते हैं हम अपने खास दोस्त की, जो अर्की हिमाचल प्रदेश के अभिनेता धर्मेंद्र ठाकुर जी को जन्मदिन की बधाई हम देने जा रहे हैं। और जब बात रंगमंच की और अभिनय की हो तो एक बेहद काबिल और प्रभाववान कलाकार का जिक्र लाजमी है। जी हाँ, कल यानी 25 मई को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से ताल्लुक रखने वाले अर्की के हमारे बेहद अजीज दोस्त टेलीविजन और फिल्मी अदाकार धर्मेंद्र ठाकुर जी का जन्मदिन था। इन दिनों धर्मेंद्र जी जी टीवी के मशहूर धारावाहिक गंगा माई की बेटियों में ठकुराइन दुर्गावती के पास अमरनाथ का किरदार और जीवंत किरदार निभा रहे हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी से उन्हें लाखों दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। धर्मेंद्र जी, आपको जन्मदिन की इस महफिल में हमारी तरफ से एक शेर समर्पित है। ईश्वर करे कि ये दिन बार बार आता रहे, ईश्वर करे कि ये दिन बार बार आता रहे, तुम्हारी राहों में फूलों का चमन मुस्कुराता रहे, मिले वो मुकाम तुम्हें जिंदगी के हर सफर में, मिले वो मुकाम जिंदगी के हर सफर में कि तुम्हारी अदाकारी का लोहा हर कोई मानता रहे, तुम्हारी अदाकारी का लोहा हर कोई मानता रहे।
रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से, मेरे यानी भारत सोपोरी और मेरे परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप यूं ही अभिनय की दुनिया में नई कीर्तिमान स्थापित करते रहें और स्वस्थ रहें। हमें बेहद खुशी है कि हम आज आपके बारे में यहां FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर बात कर रहे हैं और आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां कह रही है कि अलविदा, बट विदा लेने से पहले इस वादे के साथ कि कल सुबह नई उमंग, नई सुरों और नई यादों के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर आपसे फिर मुलाकात होगी, छोड़ जाता हूं आपको इस खूबसूरत समापन पंक्तियों के साथ। पंक्तियां यूं है, अब इजाजत दीजिए, रात का साया गहराने लगा है। अब इजाजत दीजिए, रात का साया गहराने लगा है, सुनहरी यादों का कारवां आंखों में समाने लगा है। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर नए तरानों के साथ, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर नए तरानों के साथ। अब सो जाइए कि ख्वाबों का शहर बुलाने लगा है, अब सो जाइए कि ख्वाबों का शहर अब बुलाने लगा है। यह था आज का टॉपिक और ये थी आज की पंक्तियां। उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करेंगे। अगर आप कोई फीडबैक हमें भेजना चाहते हैं, हम स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर हैं जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।